यू नो व्हाट, मैंने कल ही एक वीडियो देखी जिसमें एग्जाम्स के दौरान है ना, मतलब एग्जाम सेंटर में आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और एक लड़के की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, मतलब थोड़ी ऐसी खराब होती है कि वो लिख नहीं पाता है अपना पेपर, है ना। तो उस वक्त अपनी वो एक फीमेल फ्रेंड से मदद मांगता है और वो बहुत हैप्पीली अपना पेपर कंप्लीट करके क्विकली उसके लिए फ्री हो जाती है और वो बस बोलता जाता है, नैरेट करता जाता है और वो लिखती जाती है, उसकी हेल्प करती है। हा? तो भाई ऐसी फीमेल्स भी तो डेफिनेटली अल्फा कैटेगरी में आती है, हाँ? मतलब इंस्पिरेशन बन जाती है, हाँ? So, ये अल्फा जिक्र हुआ है और अल्फा लेडी का जिक्र हुआ है, तो आपकी नजर में भी तो कोई ना कोई होगा जिसका जिक्र आप हमसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा मूवी रिलीज हो चुकी है, आलिया भट्ट एंड शार्वरी स्टारर ये मूवी ऑलरेडी सुर्खियां बटोर रही है और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की अल्फा स्टोरी हमें बताएं ताकि जब आप मूवी देखने जाएं और फर्स्ट 10 लकी विनर्स अगर आप बने तो आपके टिकट्स को हम रिइंबर्स करेंगे। राइट, हमारी तरफ से ट्रीट है, ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट। एंजॉय कीजिए अल्फा मूवी और अपनी अल्फा फीमेल की स्टोरी हमें लिख भेजिए 9151896 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके। आरजे नुपुर मसीम मॉर्निंग शो पर।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
0: बारिश की जब बात आती है, मॉनसून जब आता है, तो बेसन के पकौड़े, प्याज वाले पकौड़े, गरम गरम चाय और ना जाने कौन कौन सी चीजें आए हाय याद आ ही जाती है। लेकिन ऐसे में रोमांस रील में ना सही रियल में दिख जाए, तो विकी कौशल एंड कैटरीना की बहुत ही प्यारी सी एक इमेज जो है वो उन्होंने शेयर करी है, तो सबको लग रहा है कि ओहो ये तो सोने पर सुहागा हो गया यार, बारिश में इतना खूबसूरत रोमांटिक मौसम में इन लोग की पिक्चर निकल कर आ जाए, वो भी पर्सनल रियल लाइफ वाली, तो मजा ही आना है। हाँ, बाय द वे ये सेलिब्रिटीज तो अपना मॉनसून एंजॉय कर लेते हैं, बारिश की पिक्चर्स रोमांटिक वाली अपलोड कर देते हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में आप मॉनसून एंजॉय करते हैं? मतलब देखो, अगर हम सिंगापुर की बात करें तो हमारे लिए तो अचानक से बारिश आ जाना भी बहुत बड़ा खुशी का पल होता है। हाँ, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि ट्रैफिक बढ़ जाता है, हम तैयारी से बाहर नहीं निकले हैं तो चिप चिप चिप चिप चिप चिप हो जाती है, हम गीले हो जाते हैं। तो क्या इंडिया में होने वाली मॉनसून में बारिश आप दूर से बैठे बैठे देखना पसंद करते हो या फिर सिंगापुर का ये सरप्राइज आपको पसंद है? 9151896 पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं आप। मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: are you?
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
3: द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। जिस तरह से कपड़ों में, डेकोरेशंस में, गैजेट्स में ओल्ड नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर डायरेक्टर एंड कंपोजर अपने शंकर महादेवन जो है वो पुराने फैशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इन म्यूजिक इंडस्ट्री। आजकल गानों में डुएट जो है ना वो बहुत मिसिंग है, मतलब सिंगल वॉइस में आपको 90% पार्ट मिल जाएगा और 10% जो है ना वो शायद आपको किसी और की वॉइस मिले। इक्वल वाला जो रेशियो है ना वो नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम बात करें दिल चाहता है मूवी का टाइटल ट्रैक या फिर लक्ष्य मूवी का, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो तुम क्या कहोगी? अब लड़की का रिप्लाई आता है प्रॉपर, है ना, तो लड़का और लड़की का जो रेशियो है ना वो इक्वल निकल कर आता है। ये वाला जो टेस्ट है ना ये म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी वक्त से गायब चल रहा है, जिसे नोटिस करके शंकर महादेवन रीलॉन्च करने का सोच रहे हैं। और जब फिल्म डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं तो कुछ काम की ही बातें निकल कर आती है, राइट? आज ये ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, बातें और गाने लगातार।

0: They were not chosen.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
2: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें.
5: आई लव यू रसना.
4: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtapes with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: You know what? एक टाइम पे इमरान हाशमी की इमेज कैसी बनी थी, द सीरियल किसर के फॉर्म में। और ये उन्होंने नहीं बनाई थी, उनकी फिल्मों ने नहीं बनाई थी, बल्कि पीआर एजेंसी ने बनाई थी, ताकि इमरान हाशमी को रोमांटिक से रोमांटिक रोल मिलते जाए विदाउट एनी डाउट। तो ये जो होता है ना पीआर एजेंसीज, ये काम ऐसे ही करती हैं, कुछ अलग तरह से, नेगेटिव तरीके से। सो एनी हाउ, मैं आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और बताना चाहूंगी आने वाले वक्त में रणबीर कपूर स्टारर मूवी आने वाली है रामायण, जिसमें वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। अपने आप में ये जो किरदार है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल निकल के आ सकता है, बिकॉज ये रिलीजन टच का किरदार है, राइट? तो अब जो है ना, एक बहुत छोटा सा जो ट्रेलर का पार्ट है आप कह सकते हैं ना, वो कहीं ना कहीं निकल के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। फिल्म मेकर्स की तरफ से तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन लोगों को वो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, एक छोटा सा स्निपेट ही है। तो कुछ कुछ लोग क्रिएटर्स जो हैं सोशल मीडिया पे साफ कह रहे हैं कि जानबूझकर फिल्म मेकर्स ने इतना छोटा सा ग्लिम्स ना लीक किया है ताकि ये मूवी की पॉपुलैरिटी बनी रहे, वरना कौन कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत, चलो बताओ। हाँ, किसी की भी नहीं यार। आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो, अब सिर्फ ये बोलकर काम नहीं चलेगा कि बोलना तो हमें भी आता है, तो क्यों ना हम भी आपकी तरह आरजेइंग, डीजेइंग, रेडियो जॉकी की तरह कॉन्वर्सेशन रेडियो पर आकर करने लगे। हाँ, अब देखो, बोलकर काम नहीं चलता है, आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग चाहिए होती है। ऑफ कोर्स यार। हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब खाली बैठे बैठे क्या करें, अपने आप को क्यों ना मस्ती मीडिया नेटवर्क के आरजे अकेडमी कोर्स में एनरोल करवा लें। राइट, सिंगापुर डिमांड में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आया है आरजे एकेडमी, और वो भी हाइब्रिड मॉडल पर। मतलब अगर आप किसी और चीज में, अपने करियर में, अपनी जॉब में इंडल्ज है, तो आप हाइब्रिड मोड ऑप्ट करके हर एक लेवल को 12 आवर्स मिनिमम देकर इन स्टूडियो एक्सपीरियंस के साथ एक आरजे कोर्स कर सकते हो। हां जी, 12 आवर्स की ट्रेनिंग में आपको बिगिनियर टू एडवांस लेवल तक लाया जाएगा। फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल and focus syllabus होंगे, और अगर आपकी एज 14 and 14 के अबव है, तो आप स्पेशल हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनसे ये सब गाइडेंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो डिटेल के लिए आप ईमेल कीजिए info@radiomasti.com.sg। आरजे नुपुर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, मस्ती मॉर्निंग शो।

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
6: जीजी
5: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
6: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: अगर आपने एक बार दो बार कोई एक्सपेरिमेंट किया है और वो अच्छा नहीं गया है तो आप क्या करते हो, कोई नए आइडिया पे स्विच हो जाते हो। लेकिन अगर ऐसे ही काम बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता रहा ना तो नए आइडियाज बन नहीं पाएंगे। पर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। एक बार आपको याद होगा, शाहिद कपूर और जानवी कपूर एक साईफाई रोमांटिक कॉमेडी में नजर आए थे जिसका नाम था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और मूवी नहीं चली थी, राइट। लेकिन वंस अगेन इन दोनों को एज अ लीड एक्टर किरदार में ढाला जा रहा है और मूवी का नाम रखा जा रहा है अदल बदल, राइट। इस मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन शाहिद एंड जानवी कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं। ठीक है भाई, करने दो एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी क्या होता है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
1: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है. जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: अगर आपसे चलते फिरते ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसने हाल ही में अपनी फीस 3 गुना कर दी है, तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए। हाँ, ये जवाब देकर आप कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन पेपर क्रैक नहीं कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाय, मैं आरजे रिपर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपके साथ, और मैं बताना चाहूंगी वो कोई और नहीं है, श्रद्धा कपूर है। श्रद्धा कपूर स्त्री 2 मूवी तक तो 5 करोड़ चार्ज कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी फीस 15 करोड़ कर ली है। और अब जो उनकी आने वाली मूवी है ईथा एंड अश्नीर ग्रोवर की जो बायोपिक है, इसमें उन्होंने ट्रिपल चार्ज किया है। और मुझे लगता है कि वो एक्ट्रेसेस जो बहुत बहुत बहुत ही सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करती हैं, अपनी आर्ट को पूरी तरह से दिखाने पर बिलीव करती हैं, उनमें से एक है श्रद्धा कपूर। और इंस्टाग्राम की फैन फॉलोइंग तो आपको पता ही है, लोग उनके नो मेकअप लुक को भी लेकर दीवानगी दिखा ही देते हैं, और उनका डांस और उनका बिखरा हुआ घर और उनका पेट, ओहो हो, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई सवाल पूछे कौन सी एक्ट्रेस है जिसने अपनी फीस को हाल ही में ट्रिपल किया है, तो आपको जवाब पता है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: वैसे कभी कभी तो आप भी सिंगापुर में रहते रहते ऐसे वाले नखरे उठा ही लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत टैनिंग हो जाएगी धूप में, ना ना ना ना, मेरे से कोई काम हो ना तो शाम को ही मुलाकात करते हैं। ऐसे वाले नखरे तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आए दिन ऐसे नखरे दिखाते हैं। यार सोचो, आप इंडिया गए हो और कैपिटल सिटी दिल्ली आपने एंट्री ले ली है, तो क्या आप बाहर नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन है, मतलब पॉल्यूशन का जो AQI लेवल है वो 500 पार हो गया है, तो क्या आप बाहर ही नहीं निकलोगे? हाँ, तो भाई ऐसी कुछ डिमांड रख दी शाहिद कपूर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले ही। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
4: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, मस्ती 90s mixtape with आपकी 90s वाली अंतरा, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: नाइन्टीज में जो है लाइफ फास्ट नहीं थी, इसीलिए यादें स्लो मोशन में बनी। हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। हेलो हेलो एंड वेलकम भाई, 90s वाली अंतरा आपके साथ जुड़ चुकी है। एंड यहाँ पर जो है पुरानी यादों का दरवाजा खोलते हुए, कभी नोटिस किया है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 90s की सबसे बात जो है खास क्या लगती है आपको, जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो हम किसी एक मूवी का नाम नहीं ले पाएंगे, किसी एक एक्टर का नाम नहीं ले पाएंगे या सिंगर का नाम नहीं ले पाएंगे। हम कहेंगे यार उस वक्त जो है सभी कुछ इतना अच्छा सा था, राइट? सब कुछ बड़ा धीरे धीरे होता था, फिल्म रिलीज होने का इंतजार करते थे, संडे मूवी का इंतजार करते थे, फेवरेट गाने का रेडियो पे आने का इंतजार करते थे, फोटो डिवेलप होने का इंतजार करते थे, स्कूल की समर हॉलीडेज का इंतजार, और इसीलिए हर खुशी की वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी। 90s बॉलीवुड भी इसी फीलिंग से भरा हुआ था। एक गाना शुरू होने से पहले ही कहानी बिल्ड हो जाया करती थी, एक हीरो की एंट्री से पहले सस्पेंस बनता था, एक लव स्टोरी धीरे धीरे दिल में उतरती थी। नाउ एवरीथिंग हैड अ ब्यूटीफुल पॉज, और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। ना हर वक्त फोन हाथ में, ना हर मेमोरी की फोटो हमारे पास, ना हर मोमेंट की रिकॉर्डिंग हमारे पास, कुछ चीजें बस जी ली जाती थी और फिर वही यादें सालों के बाद सबसे खूबसूरत कहानियां बन के आ जाती थी। इसीलिए मस्ती 90s मिक्स टेप सिर्फ नॉस्टैल्जिया का शो नहीं है, ये उन लम्हों को भी फिर से महसूस करने का सफर है जहां पर एक ब्लॉकबस्टर जो है वो कुछ भी बन जाया करती थी, चाहे वो उस टाइम का फैशन हो, चाहे उस टाइम के डायलॉग्स हो, चाहे वो उस टाइम पे नजर उठा के देखने का वो अंदाज हो। तो सीट बेल्ट बांधने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खोल दो वो सीट बेल्ट, ठीक है? अगले कुछ घंटे जो है हम आराम से चलेंगे वही उन यादों की तरफ, जहां पे हर गली में क्रिकेट, हर रेडियो पे गाने, हर सिनेमा हॉल में सीटियां बजा करती थी, और हर बचपन में थोड़ी नहीं बहुत सारी मस्ती जरूर जरूर थी। तो शुरू करें मस्ती 90s मिक्सटेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: बिस्तर पे पड़े पड़े फैन को, सीलिंग फैन को चलते हुए देखना, चाहे वो कम वोल्टेज आने की वजह से ही धीरे धीरे घर घर घर, बट उसकी स्पीड के हिसाब से 90s के बच्चों का उसमें जोन आउट हो जाना, ऐसे सोच में पड़ जाना कि पता नहीं कौन सा साइंस दिमाग में हमारे कौन सा इन्वेंशन ही हो जाएगा आज की डेट में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं 90s वाली आंत्रा आपके साथ यहां पर। भाई वी ट्रस्टेड नंबर 5 मोर देन साइंस डिड। 90s के घरों में एक साइंटिस्ट हर फैमिली में हुआ करता था और उसकी लैब हुआ करती थी सीलिंग फैन, नहीं सीलिंग फैन का रेगुलेटर। गर्मी जैसे ही शुरू होती थी, एंड कानपुर में तो बहुत ही, आज भी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो सीधा हाथ जाता था स्पीड नंबर 5 पे। ठीक है, 3-4 पे तो हम मानते ही नहीं थे, सीधा 5 पे रेगुलेटर घुमा के जो है डाल दिया जाता था, जैसे फैन को नहीं रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे हो। और फनी बात यह थी, हम सबको लगता था कि जितनी बार रेगुलेटर को इधर उधर घुमाएंगे फैन उतनी जल्दी फास्ट हो जाएगा। 5 पे है, फिर एक बार 0 पे ले जाके फिर 5 में करते हैं, क्या पता 5 और ज्यादा तेजी से चलने लगे। जैसे फैन को याद दिला रहे हो, बॉस फुल स्पीड पे काम करो, अभी हुआ नहीं है, हम जो 5 की स्पीड सोच रहे हो अभी तक तुम वहां पे पहुंचे नहीं हो। और अगर हवा कम आ रही है तो प्रॉब्लम फैन में नहीं होती थी, हम या तो रेगुलेटर को दोबारा घुमा देते थे, वो ट्राई खत्म हो जाता, तो भाई वोल्टेज की कमी है। हाँ फिर कुर्सी पे अक्सर खड़े होकर हम देखते थे कि यार पंखा स्लो तो नहीं चल रहा। फिर पेरेंट्स अगर घर पे हो तो जो है ऐसे क्लासिक डायलॉग्स भी आया करते, दरवाजा बंद करो, हवा भाग रही है, खिड़की बंद करो। उस वक्त हमें पूरा यकीन था कि रेगुलेटर बार बार घुमाने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, साइंस क्या कहती थी उससे हमें उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं हुआ करता था। उस रेगुलेटर की वो टक टक टक टक वाली फीलिंग भी कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती थी, नहीं एक मैकेनिकल क्लिक और लगता था कि अब तो एंटार्क्टिका वाली हवा ही आएगी यहां से। आजकल कितना फैंसी सा हो गया ना, रिमोट से फैन चल रहे हैं, ऐप से कंट्रोल हो रहे हैं, वॉइस कमांड से स्पीड बदल जा रही है बॉस, लेकिन उस गोल रेगुलेटर को उंगली से टक टक टक घुमाने का जो सेटिस्फैक्शन था वो किसी स्मार्ट फैन में नहीं है दोस्त। इसीलिए तो 90s वाली बातें हमें इतनी अच्छी लगती हैं, है ना, वापस से उस टक टक टक वाले टाइम पर जाकर वापस से रियलिटी में आना। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, है ना।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: They were not chosen. They were created.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
4: Alpha.
2: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
2: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
2: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट. पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना. ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना. नाइन्टीज का कॉलेज, बाय गॉड की कसम ऐसा लगता था कॉलेज चले जाएंगे तो पढ़ाई ही छूट जाएगी, हमारी बहुत बड़ा काम हो जाएगा. क्योंकि वही चीज दिखाई गई थी ज्यादातर बॉलीवुड 90s वाले कॉलेजेस में. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा मस्ती 90s मिक्सटे. बिकॉज वी सॉ मूवीज में जो है यू नो आप यूनिफॉर्म से बाहर आ जाते हो, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप तैयार होकर हाथ में एक दो बुक किताब ऐसे लेकर कॉलेज पहुंच जाया करते हो. सो कैंपस वॉज मोस्टली फैशन, राइट. 90s बॉलीवुड का कॉलेज जो हो अलग ही यूनिवर्स था, राइट. एडमिशन कॉलेज में होता था लेकिन पढ़ाई कब होती थी ये तो. वेल, हीरो कॉलेज आ रहा है, ठीक है, जीन्स एंड लेदर जैकेट, कूल सनग्लासेस, शोल्डर पे बैग भी नहीं है, हाथ में बुक्स हैं थोड़ा बहुत, बस स्टाइली स्टाइल एंड हीरोइन मैचिंग आउटफिट्स, कलरफुल क्लिप्स, डिजाइनर बैकपैक्स जिनमें शायद बुक्स से ज्यादा इमोशन हुआ करते थे. 90s की कितनी कॉलेज मूवीज जो है, बिल्कुल मेरे कॉलेज की एक जन्नत की कोई हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अजय देवगन कमिंग, एंट्री मारना कॉलेज में वो एकदम स्प्लिट करते हुए बाइक पर. आई मीन ओ माय गॉड, कॉलेज तो यही है, राइट. मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, वो क्या वो रूम में पूरे दुनिया को ऐलान करना कि मैं तुमसे प्यार कर. इट्स बी सो 90s कॉलेज, डांस फुल, रोमांस फुल, लेकिन क्लासरूम हाँ वो कभी कभी दिखाई जाती थी. वेल, यहाँ पे 90s के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स और प्रॉप की टीम्स भी कई बार इंटेंशनली हीरोज को कम बुक्स या बिल्कुल बुक्स के बिना दिखाते थे. रीजन बींग हैवी बैग्स या बुक्स एक्टर की बॉडी लाइन और कॉस्ट्यूम को कवर कर दिया करते थे. सो डांस, एक्शन और वॉकिंग शॉट्स में सिल्वेट जो है वो क्लीन दिखे, इस वजह से इसको किया जाता था. इसीलिए हीरोज को लाइट रखा जाता था, मतलब फैशन भी कैमरा के हिसाब से डिजाइन किया जाता था. एंड कभी आपने नोटिस किया हीरो को असाइनमेंट सबमिट करना हो तब भी बस एक ही नोटबुक या कुछ पेपर उसको पकड़ा दिए जाते थे, एग्जाम देने जाना हो तब भी एक ही फाइल दी जाती थी. रियल कॉलेज स्टूडेंट्स सोच रहे होते थे उस टाइम पे कि भाई ये जो हमारा प्रैक्टिकल फाइल है यही हमारा 2 किलो का है. ये कौन से वाले कॉलेज है जिसके बारे में हमें नहीं पता. फिर भी हम उन्हें देखकर वही हेयर स्टाइल करवाते थे, वैसी शर्ट्स ढूंढते थे, वैसे शूज पहनते थे, वैसी ड्रेसेस पहनते थे, क्योंकि 90s बॉलीवुड का कॉलेज रियलिटी से ज्यादा ड्रीम कैंपस हुआ करता था. वहां अटेंडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंट्री कैसी हुई मूवी में, लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था लव सॉन्ग, हीरोइन कहाँ है, हीरो कहाँ है, एंड लाइब्रेरी से ज्यादा फेमस था कैंटीन. 90s के कॉलेज की फिल्म्स इसीलिए इतनी फील गुड फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि उसका सच्चाई से कुछ लेना देना ही नहीं होता था. काश हम ऐसे कुछ कॉलेज में होते, नहीं आज भी हम यही सोच रहे होते हैं. सुपर 90s, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्सटेप.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: वेलकम बैक मस्ती 90s मिक्स टेप में, आप हो अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई 90s का बॉलीवुड, क्योंकि अभी थोड़ी देर कॉलेज वाले बॉलीवुड की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा रोमांस और डायलॉग्स की भी बात हो जाए, उसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। नाउ रोमांस सिर्फ डायलॉग से नहीं, कलर से डेफिनेटली हुआ करता था। कभी आप सोचो, हीरो ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो हीरोइन का दुपट्टा भी कहीं ना कहीं उधर आपको ब्लू मिल ही जाएगा। हीरो अगर व्हाइट में है तो हीरोइन पेस्टल शेड में मिलेगी। हीरो मरून में है तो हीरोइन के आउटफिट में वही फैमिली ऑफ कलर्स मिलेंगे। सो 90s के वक्त ये काफी एक ट्रेंड था, अ ह्यूज वन। लेकिन आज देखते हैं तो फिर तब समझ में आता था कि ये कोइंसिडेंस नहीं था। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 90s में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स जो है लीड पेयर के आउटफिट्स को अलग अलग डिजाइन नहीं करते थे, वो पूरे गाने का कलर पैलेट जो है वो प्लान किया करते थे। क्योंकि उस वक्त फिल्म स्टॉक पर कलर्स आज के डिजिटल कैमरास की तरह मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते, राइट? सो इसीलिए हीरो और हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस और बैकग्राउंड्स को इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाता था ताकि पूरा फ्रेम विजुअली ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड लगे। मतलब लव स्टोरी सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं, कॉस्ट्यूम कलर्स में भी लिखी जाती थी। और फिर क्या क्या जो है कॉम्बिनेशंस हुआ करते थे, येलो सरसों का खेत एंड मस्टर्ड के शेड्स, स्नो के लोकेशंस तो ब्राइट रेड स्वेटर, ग्रीन ग्रीन अगर वादियां दिख रही हैं तो व्हाइट कॉस्ट्यूम्स भी दिख रहे हैं। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता था। एंड उस वक्त हमें फैशन मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक ये कि मैचिंग होना चाहिए, वो भी बॉलीवुड की देन थी, राइट? 90s में रियल लाइफ में भी लगता था कि अगर उसने ब्लू पहना है तो मैं भी ब्लू पहनूंगी और या पहनूंगा। सो 90s के फिल्म मेकर्स को पता था कि कभी कभी ऑडियंस डायलॉग अगर भूल भी जाए, लेकिन एक खूबसूरत विजुअल कभी नहीं भूलेगी। और इसीलिए पहला नशा या फिर तुझे देखा तो ये जानो सनम, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, या कोई भी रोमांटिक गाना उठा के आप देख लो, तो सिर्फ वो मेलोडी नहीं था, उनके हमें कलर्स भी याद आते हैं। ऑनेस्टली बहुत अच्छे से याद आते और ज्यादा यू नो दे हैव स्टेड विद अस, एंड दैट्स द ब्यूटी एंड मैजिक ऑफ द 90s, दैट इट्स सो एम्बाइब्ड इन अस कि हम लोग तुरंत से तुरंत एकदम बता, ओ अच्छा ये वाला उसमें तो उसने ये, आई से टिप टिप बरसा पानी, कांट यू सी येलो सारी एंड रवीना टंडन, इट्स लाइक या so here you go. Stay tuned to Masti 90s Mixtape.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। I'm so into Bollywood mode at this point of time, but कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। गलियारे 90s के तो इतने सारे हैं, कहीं पर भी चलते जाओ तो एक याद से दूसरी याद जो है वो कनेक्ट हो जाया करती है। ये तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा। मस्ती 90s mixtape, आप सुन रहे हो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ अंतरा आपके साथ। यहाँ पर भाई अगेन बॉलीवुड के 90s की बात करें तो एक और चीज आपको नोटिस कराना चाहती हूँ कि हीरो हीरोइन कभी भी कैमरा में सीधे मतलब डायरेक्टली कैमरा की ओर नहीं देती थी, काइंड ऑफ लुक्ड अवे। या कोई भी रोमांटिक, जब बहुत ही रोमांटिक गाना है बहुत ध्यान से अगर देखे तो हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देखते थे लेकिन कैमरा को ऑलमोस्ट कभी नहीं देखते थे। सो देख रहा है, ठीक है, हीरोइन शर्मा के नजरें झुका रही है, कभी आसमान की तरफ देख रही है, कभी दूर कहीं देख रही है, लेकिन कैमरा की तरफ बिल्कुल भी नहीं। और पता है, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये फिल्म मेकिंग का एक स्मार्ट ट्रिक था। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की बात मैं बताने वाली हूँ। 90s के डायरेक्टर्स अक्सर एक्टर्स को कहते थे कैमरा लेंस में मत देखो, उसके थोड़ा साइड या उसके पास देखो। रीजन बीइंग, ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि वो सीन को क्वाइटली विटनेस कर रहे हैं, ना कि एक्टर्स उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। इस टेक्निक से रोमांस और भी नेचुरल और इंटीमेट फील हुआ करता था। सो दो दिल मिल रहे हैं, जैसे ये गाना है, हार्डली शाहरुख खान सीज लाइक डायरेक्टली टुवर्ड्स द कैमरा, राइट? और हीरो अचानक सीधा कैमरा में देख कर अगर गाने लगे तो ये why ऐसे क्यों? 90s के फिल्ममेकर्स को पता था प्यार जितना कम एक्सप्लेन किया जाए उतना ज्यादा महसूस होता है, इसीलिए नजरें भी कहानी का हिस्सा हुआ करती थी। कभी मिलती थी, कभी चुरा ली जाती थी, कभी सिर्फ एक सेकंड के लिए टकराती थी और वही एक सेकंड पूरे गाने का एकदम दिल जानो जिगर बन जाता था। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर फोटो और वीडियो को सीधा कैमरा देख कर बनती है, राइट? तब प्यार कैमरा के लिए परफॉर्म नहीं करते थे, एक दूसरे के लिए होता था। 90s के लव सॉन्ग ऐसे ही थोड़ी ना हमको लगते हैं कि एकदम दिल को चीरते हुए निकल जाएंगे। दे आर जस्ट सो मैजिकल एंड सो ब्यूटिफुल, राइट? लव इट एंड लव डूइंग दिस शो एज वेल, विच इज मस्ती 90s मिक्सटेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आंखें खुली हो या हो।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: गेम्स पीरियड कैंसिल हो गया है और ये जब सुनते थे 90s के स्टूडेंट्स, उनको लगता था यार एक ही तो दिन में आज अच्छा पीरियड था, वो भी कैंसिल हो गया। मेरे जैसे स्टूडेंट्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अल्ट्रा आपके साथ यहाँ पर, और चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई बेस्ट सब्जेक्ट वॉजेंट अ सब्जेक्ट माई डियर फ्रेंड्स। 90s के स्कूल में एक अनाउंसमेंट जब ये वैली होती थी जो पूरी क्लास का मूड एक सेकेंड में बदल देती थी। टीचर आए, अटेंडेंस ली और फिर बोले भाई आज जो है गेम्स पीरियड नहीं होगा। बस वो जो कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट आती थी आवाज में, चेहरों पे, उसका कोई जवाब ही नहीं है। लाइक आप बताओ, मैथ्स कैंसिल हो जाए तो खुशी होती थी, लेकिन ये गेम्स पीरियड, ओहो, दिल टूट ही जाता था हमारा। क्योंकि गेम्स पीरियड एक पीरियड नहीं था यार, फ्रीडम का ऑफिशियल लाइसेंस हुआ करता था। स्कूल शूज की जगह हमें कैनवस शूज पहनने पड़ते थे, क्लासरूम की जगह प्लेग्राउंड होता था। एंड फॉर द बॉयज इन आवर क्लासरूम, के या तो फुटबॉल खेल रहे हैं, या तो यू नो बास्केटबॉल पे चले गए हैं, या फिर जाके इन लोग ने क्रिकेट चालू कर दिया था। एंड यू नो ये गेम्स पीरियड में भी हर कोई एक्सरसाइज करने नहीं जाता था, ये वाली लिबर्टी भी हमें वहां पे मिल जाती थी। एंड आई रिमेम्बर प्लेइंग खो खो एंड कबड्डी एंड एवरीथिंग, और इतनी जल्दी निकलता था ये टाइम कि क्या ही बताओ। बट वही जो है ना, दोस्तों के साथ ग्राउंड के कोने कोने में यू नो जहां पे जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे चल रही है, जो मर्जी आए किया जा रहा है, लेकिन क्लास के अंदर रहना वो ऑप्शन किसी को पसंद ही नहीं था। और जब गेम्स का सर जो है विसल दूर से सुनाई देती थी तो पहले एक्साइटमेंट हो जाती थी कि मैम नो, गेम्स पीरियड, लाइन बनाओ, ग्राउंड चलो, एंड 40 मिनट्स में कोई होमवर्क का लोड नहीं, यूनिट टेस्ट का प्रेशर नहीं, बस दौड़ते रहो, भागते रहो, हंसते रहो, बातें करते रहो, बेल बजने से पहले एक लास्ट राउंड और खेलना। ओ माई गॉड। एंड स्पेशली आई विल टेल यू, गेम्स पीरियड अगर लास्ट पीरियड हो या लास्ट सेकेंड पीरियड बना दिया क्या हो, फिर तो जो खुशी का आलम हुआ करता था ना, इट इज़ द सेम फीलिंग जो आप अपने लास्ट एग्जाम, लास्ट पेपर देने जाते थे ना, कि भाई इसके बाद तो छुट्टी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला एक्साइटमेंट हम फील किया करते थे। कोई लौटा दे ये गेम्स पीरियड वाले दिन, नहीं ऐसा ही होता है अडल्ट होने के बाद, यही लगता है कि वही दिन अच्छे थे ब्रो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: कसेट से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: चप्पल उल्टी हो गई, सीधी करो वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे टाप दिया, अरे ये लंबा नहीं होगा, बीजा खा लिया, अब तो पेड़ निकल के रहेगा पेट में से। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ। भाई 90s में हर घर के पास ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स हुआ करते थे, ये सिर्फ रूल्स नहीं, ये अनरिटन बिलीव्स हुआ करते थे, और उनमें से ये एक था कि लगभग हर इंडियन घर में ये कॉमन था। क्या अब भी काफी घरों में ये कॉमन है? इनफैक्ट मेरी मॉम तो अभी भी कहती है कि वो चप्पल उल्टी हो गई है, उल्टी तो रहने नहीं दे सकते, उसको सीधी करनी पड़ेगी। दैट इज राइट। आप आराम से घर में घूम रहे हो और या पीछे से आवाज आती थी, अरे चप्पल सीधी कर दो, हम पूछते थे क्यों, बस सीधी कर दो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद यूजुअली वही यूजुअल सी लाइन आती थी कि उल्टी चप्पल अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती है वो भी तो बताना उनको जरूरी था, हमें जानना भी जरूरी था, लेकिन 90s में इतने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं चलते थे। उतनी सी बात है, सीधी कर दो, अच्छा नहीं होता है। ऑनेस्टली कभी कभी तो हम खुद भी किसी की उल्टी चप्पल को देखकर ऑटोमेटिकली सीधा, इट इज मसल मेमोरी जिसको कहते हैं ना, ये वैसे हो गए हैं। मतलब आपसे मैं क्या ही बताऊँ, मसल मेमोरी की ऐसी हालत है कि अगर मैं आपसे जाते जाते टकराई, ठीक है, आप बैठे हुए हो और आपके पैर के पास कुछ पड़ा हो और मैं उसको उठाने जाऊँ और मेरा नी आपसे लग जाए या कुछ हो जाए, टकरा जाऊँ आपसे, तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जैसे प्रणाम करते हैं ना वैसे ऊपर नीचे ऐसे करके, वेरी ऑटोमेटिकली, मुझे ज़्यादा कुछ कर, इट्स सो मच इन टू मी। सो 90s का बचपन ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू बिलीफ से आई थिंक भरा हुआ था। शाम के बाद झाड़ू मत लगाओ, किताब को पैर मत लगाओ, उल्टी चप्पल सीधी कर दो, सही था गलत था ये बहुत अलग बात है, लेकिन उन बिलीव्स में एक चीज जरूर थी, घर वालों ने अपनी दुनिया बना रखी थी, अपने ट्रेडिशंस, अपनी बातें, अपना ही एक लॉजिक बना रखा था। आज हम काफी आगे इवॉल्व हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, साइंस पढ़ ली है, गूगल कर लिया है, चैट जीपीटी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी चप्पल उल्टी दिखे, हाथ या पैर ऑटोमेटिकली उसको जाकर सीधा कर देता है। अगेन यू विल आस्क व्हाई, भाई क्योंकि है, इट इज व्हाट इट इज। अब तो हम भी उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमें ना एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम करते हैं जस्ट बिकॉज वी डू इट राइट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी ही 90s की बातें और 90s की यादें जो है बिल्कुल ताजा करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में 90s के गाने भी चलते रहने चाहिए, राइट? लेट्स गो।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: रानी तो पॉकेट में चली जाती थी, कवर ही तो भूल जाया करते थे, है ना। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप पर अब चलते हैं कैरम बोर्ड की तरफ। 90s के गेम्स की बात हो और कैरम की बात ना हो तो ऐसे कैसे ही हो सकता है यार, कम ऑन। वो जो सेटअप ही होता था, वो सेटअप ही कितना क्लासिक होता था, ठीक है। कैरम के आसपास जो चार स्टूल लगते थे वो तो एक बात थी, फिर वो जो कैरम को नहलाया जाता था पाउडर से, जो भी पाउडर आपके पास अवेलेबल हो। देखिए, कुछ घरों में तो एक्चुअली में कैरम बोर्ड वाला पाउडर जो है वो अवेलेबल होता था, लेकिन हमारे घर में क्या यूज होता था, पॉन्ड्स वाला, जो भी बेसिकली पॉन्ड्स, नाइसिल, जिसमें भी पाउडर बाकी हो और जिसमें जिस लेवल की डार्ट पड़े उसको यूज करने के बाद। बट हम ऐसे उसको लेयर में कि जो हमारा स्ट्राइकर और गोटिया है वो सर सर सर गति हुई जाए एक तरफ से दूसरी तरफ। सो 90s के इस बचपन के इस रिकॉर्ड में इस गेम ने हमें एक्साइटमेंट के साथ साथ हार्ट ब्रेक भी काफी दिया हुआ है। दैट्स राइट, वो रॉयल मोमेंट कि क्वीन पॉकेट करना है, वेरी गुड। जैसे ही हमारी रानी कलर की क्वीन पॉकेट हुई, दिल में सेलिब्रेशन शुरू हो गया, चेहरे पे स्माइल आ गई, लगने लगा यार अब तो हम जीत ही गए, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता था, हम लोग अपना शोल्डर वोल्डर झटक के एकदम तैयार हो जाते थे। बस अगला शॉट मिस हो गया क्योंकि कवर लेना ही भूल गए हम एक्साइटमेंट में। सामने वाला जो है प्लेयर सीधे एकदम बोलता था कि भाई क्वीन वापस सेंटर में रखो, चलो चलो हो गया बहुत। उसी सेकंड हीरो से जीरो बन जाया करते थे। सच बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, क्वीन पॉकेट करना मुश्किल था, राइट, लेकिन उसके बाद कवर लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और फिर वो पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती थी, सब बोलते थे पहले कवर देख ले, क्वीन बाद में ले लेना, लेकिन एक्साइटमेंट में कौन सुन कौन रहा है उनको। कैरम वैसे भी सिर्फ गेम नहीं था, घर की डाइनिंग टेबल फ्लोर पे बिछा बोर्ड, पाउडर की खुशबू, स्ट्राइकर पे परफेक्ट फिंगर पोजीशन और हर शॉट के बाद फाउल है, नहीं है, दोबारा से मार। 90s में टूर्नामेंट ड्राइंग रूम में हुआ करते थे एंड स्पेक्टेटर होता था पूरा घर, इसीलिए कैरम ने हमें एक ये छोटी सी लाइफ लेसन भी दे दी, सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिल जाना इनफ नहीं होता, उसे कंप्लीट भी करना पड़ता है। क्वीन पॉकेट करना और कवर लेना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे। आजकल गेम वर्ल्ड has just gone crazy technology wise and visual effects wise and everything. Restart button hota hai, lekin carom ke board pe ek galti aur queen phir se center mein aa jati thi, theek hai. Oh god, seriously, now I feel like playing carom board this weekend. I just randomly talk about things over here and I feel like

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

प्लास्टिक की बाल्टी, सच अ 90s थिंग ब्रो, बहुत ही ज्यादा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप, हमारा 90s वाला मल्टीपर्पस चाइल्डहुड। 90s के घरों में अगर किसी एक चीज को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए तो आई थिंक वो प्लास्टिक की बाल्टी को मिलना चाहिए। मतलब उस बेचारी का असली काम क्या था मुझे क्या बताओ, आप बताओ। नहाने की बाल्टी बिल्कुल नहीं, सुबह बाथरूम, दोपहर को कपड़े भिगोने के लिए, शाम को पोछा लगाने के लिए, कभी टेरेस पे पानी भरने के लिए, कभी पौधों को पानी डालने के लिए, कभी आम ठंडा करना है तो उसके लिए, मतलब एक बाल्टी की पूरी डे की शिफ्ट होती थी शिफ्ट। एंड घर में अगर गेस्ट आ जाए तो वही बाल्टी बाथरूम से निकल कर कार वॉशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाया करती थी। कभी उसमें टॉयज भर दिए, कभी दिवाली की सफाई का सामान कर दिया। हमारे यहाँ तो दिए भी जो है कभी कभी बाल्टियों में पहले गीला करना पड़ता है ना, उनको गीला करके रखना पड़ता है। सो कभी घर शिफ्ट करते वक्त टेम्प्रेरी उसको स्टोरेज बॉक्स ही बना लिया, काफी सारी चीजें उसमें डाल दी और उसमें डाल के उसको शिफ्ट कर दिया। एंड बचपन में बाल्टी का एक और यूज था, उसे उल्टा करके स्टूल बना, मतलब कुछ भी करा लो। हम इतने ज्यादा जुगाड़ू जो है, 90s द जुगाड़ू जनरेशन, आई टेल यू, उस पर बैठ कर नहा लो, उसको उल्टा करके तबला बजा दो। 90s के घरों में चीजें सिर्फ एक काम के लिए कभी भी नहीं हुआ करती थी, उनकी वर्सेटैलिटी ही उनकी सुपर पावर थी। नहीं, आज हम हर काम के लिए अलग यू नो प्रोडक्ट यूज करते हैं। आई हैव अ लॉन्ड्री बास्केट, ठीक है, हर चीज के बॉक्सेस एकदम सेपरेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्टोरेज बिन है, बाहर पानी जो है पौधों को डालना है तो उसके लिए अलग जो है कैंटर ला रखा है, खूबसूरत भी चीजें लगनी चाहिए। ये सारी चीजें पहले नहीं थी उस टाइम पे, 90s में एक प्लास्टिक की बाल्टी सब संभाल लिया करती थी और उस बाल्टी से सिर्फ पानी नहीं उठता था, पूरा घर चलता था। याद आई, आपके घर में कौन से कलर की बाल्टी है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई रिमेम्बर ये नीले रंग की एक बाल्टी जो हमारे घर में, पता नहीं वो जब बिल्कुल क्रैक ही हो गई, टूट गई, तो उसको मम्मी ने शायद पोछे की बाल्टी बना दी। एंड उसके बाद तो जब उसमें से भी नीचे से पानी चूने लगा तो उसके बाद आई थिंक उसको फेंका गया फाइनली। बट आई हैव मेमोरी ऑफ, स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नीले कलर की वो बाल्टी। आई एम श्योर ये नीला और लाल, लाइक दीज वर द टू कॉमन बाल्टी कलर्स, नहीं या फिर वो एक बहुत ही खाया हुआ च्युइंगम का वो जो एकदम पिंक कलर होता है ना उस कलर की भी बाल्टियां मिला करती थी। ओ गॉड, दैट वाज अ वियर्ड डिस्क्रिप्शन।

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे। '90s के हेयर फ्लिप्स का राज क्या था, बताओ। मैं बताऊं कि ना, क्योंकि काम ही मेरा ये है मस्ती 90s मिक्स टेप पे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर। एंड भाई, बिहाइंड एवरी मैजिकल हेयर फ्लिप एक फैन ऑपरेटर हुआ करता था। सो वेल, जब 90s के फिल्मों में हीरोइन बस धीरे से मुड़ती थी और उसके बाल बिल्कुल परफेक्ट स्लो मोशन में उड़ते थे कि एक स्ट्रैंड भी ज्यादा नहीं, एक स्ट्रैंड कम नहीं, जैसे हमारे भी लाइक पूरी कोरियोग्राफी फॉलो कर रखी है, हम पहले सोचते थे कि यार इनके बाल इतने परफेक्टली कैसे उड़ रहे हैं, कोई सीक्रेट शैम्पू, कोई स्पेशल जो है ऑयल, नहीं जी नहीं। सो 90s की फिल्म में जो हुआ करता था, हेयर मूवमेंट को नेचुरल हवा के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। सेट पर डेडिकेटेड फैन ऑपरेटर्स होते थे जो बड़े इंडस्ट्रियल फैंस को एग्जैक्टली राइट मोमेंट पर ऑन किया करते थे। डायरेक्टर जो है वो एक्शन बोलते और एक्शन पे जो है एक्टर मार्क पे आता, फैन ऑपरेटर टाइमिंग के साथ हवा चलाता, इसीलिए हीरोइन का हेयर फ्लिप हर टेक में लगभग सेम दिखा करता था। और सिर्फ हीरोइन के बाल ही नहीं, दुपट्टा भी वही डायरेक्शन में उड़ता, पेड़ के पत्ते भी उसी डायरेक्शन में, हीरो की शर्ट भी वही डायरेक्शन में, मतलब हवा भी उस जमाने में असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम का हिस्सा लगा करती थी। और बेचारे फैन ऑपरेटर्स, उनका नाम तो पोस्टर पर कभी आया ही नहीं, लेकिन उनकी टाइमिंग के इतने आइकॉनिक रोमांटिक सीन्स जो हमें दिए हुए हैं, जस्ट इमेजिन अगर हवा एक सेकेंड लेट चलती या उल्टे डायरेक्शन में चलती तो पूरा शॉट दोबारा, राइट? 90s के फिल्म मेकर्स को पता था रोमांस सिर्फ एक्सप्रेशन से नहीं बनता, कभी कभी एक हल्की सी हवा भी दिल को जीत जाती है। आजकल CGI से बहुत सारा कुछ क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन तब मैजिक कंप्यूटर नहीं, क्रू की परफेक्ट टाइमिंग जो है उसको मैजिक क्रिएट किया करते थे। और आज भी जब भी हम कोई भी रोमांटिक गाना देखते हैं और सुनते हैं 90s के टाइम का, और ऐसी हीरोइन के हवा में बाल जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लहराते हैं, एवरीथिंग थे, नाउ ऑनवर्ड्स एवरी टाइम यू वॉच दैट, जस्ट इमेजिन एंड से थैंक यू टू दैट अमेजिंग फैन ऑपरेटर एज वेल। बहुत अंडररेटेड है, वी नेवर टॉक अबाउट द फैन ऑपरेटर्स, राइट? ना उनका उधर नाम मेंशन, ना हम बात करते हैं, बट देन टाइमिंग वाज सो प्रेशियस अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने सोचा 90s की इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वाई नॉट गिव देम ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर रही हमारे साथ।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

पिक्सल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। गेट के बीच में से हाथ निकाल के लॉक को खोलना है ना, कर दिया मैंने एकदम 90s वाली बात। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ आप। मस्ती 90s मिक्स टेप में हूँ, 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ। एंड 90s के बच्चे गूगल से स्मार्ट नहीं बनते थे, जुगाड़ से स्मार्ट बनते थे। और उस जुगाड़ का एक लेजेंडरी एग्जाम्पल यही गेट के बीच में से हाथ निकाल के अंदर का लॉक खोलना। सो गेट का वो जो आयरन वाले गेट जो है, अगर वो बंद होते थे, बेल बजाने का पेशेंस ही नहीं है, ठीक है। और किसी को भी लाइक बाहर से चिल्ला के आवाज देने का भी अगर मूड नहीं है, तो सीधा हाथ गेट की ग्रिल के बीच से अंदर और थोड़ा सा और स्ट्रेच ऐसे करके, फिर क्लिक, और उसके बाद ऐसे करके ऊपर नीचे, क्योंकि वो वाले कुंडी वाले होते थे ना लॉक्स, तो वो लॉक इस तरह से खुला करते थे। एंड उसको करके ऐसा फीलिंग ऐसी आती थी कि मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट। अगर हाथ थोड़ा छोटा पड़ गया तो पूरी बॉडी का ही एंगल चेंज हो जाया करता, एक पैर इधर एक पैर उधर, सिर्फ लॉक तक पहुंचना है बस। कभी कभी तो दोस्त भी गाइड करते थे, थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा यार टेढ़ा हो ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। जैसे जैसे गेट खुलता ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई सीक्रेट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया हो। 90s के बच्चे शॉर्टकट ढूंढते जरूर थे, लेकिन वो शॉर्टकट्स क्रिएटिविटी से इतने भरे होते थे कि क्या ही बात करें। कभी स्टिक से स्विच ऑन करना, कभी रूलर से डोर बंद करना, गेट के लॉक तक हाथ को पहुंचाना, ये तो ऑलमोस्ट हर कॉलोनी के बच्चे को आता था। आजकल के डोर्स है, ऑटोमेटिक है, वीडियो डोर बेल्स है, डिजिटल लॉक्स है, लेकिन तब एक छोटा सा आयरन गेट भी एडवेंचर बन जाता था। इसीलिए 90s का बचपन इतना मेमोरेबल था, हर रोज कोई ना कोई एक छोटा चैलेंज सामने होता था और हम उसका सलूशन निकाल रहे होते थे, खुद इन्वेंट ही कर लेते थे, ज्यादा हमें लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आई स्टिल नो अ हाउस, मेरी मासी का घर है, कजन मासी का घर है, जिनका वो जो है आयरन का गेट है। एंड दैट पर्टिकुलर साउंड ऑफ दैट जो एकदम आयरन के गेट की आती है जब आप कुंडी खोल रहे होते हैं, या इट दैट यूज टू बी अ वेरी फेमिलियर साउंड। हमें लगता था कि हम मासी के घर में जा रहे हैं तो ये तो उनके घर की आवाज़ है। हाउ मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद द साउंड एज वेल, इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स द ब्यूटिफुल 90s वी आर टॉकिंग अबाउट। या बस कुछ देर और, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, घंटे खत्म होने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
4: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
6: टाइम टू रेज द बार।
7: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
5: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
8: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: अयो कैसे एकदम सही में यार, अच्छा टाइम ऐसे ही गुजरता है। फिर से रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप बिल्कुल चल रहा था यहाँ पर, और फिर 90s में थोड़ी देर के लिए वापस जाकर अच्छा लगता है यार, पूरा एकदम मूड रिफ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर ही सही बट बहुत अच्छा एक फीलिंग आता है, जहाँ पर एक सीलिंग फैन का रेगुलेटर जो है वहाँ से लेकर बॉलीवुड के कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बुक्स कम हुआ करते थे, स्टाइल ज़्यादा होता था, हीरो हीरोइन के मैचिंग कलर्स, यू नो आँखों से रोमांस करना, देन एक दूसरे से यू नो गेम स्पिरिट की खुशी बांटना, एंड यू नो वो कैरम की क्वीन का पॉकेट होना, कवर भूलते ही सारी खुशी हवा जो हो जाना, एक प्लास्टिक की बाल्टी रूम से लेकर टेरेस तक सब कुछ वो कवर ही करते हुए जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट की मैनेजर बनी हुई है वो हीरोइन के बाल में हवा जो है वो उसका उड़ना। आई थिंक 90s की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यह थी कि उस वक्त ऑर्डिनरी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी। इफ़ यू सी कि हम इस शो पे जब भी मैं आती हूँ और बात करती हूँ, आई जस्ट पिक अप मोमेंट्स फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ द मेमोरीज आई हैव, एंड यू नो व्हेन वी आई टॉक टू अदर पीपल दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, एंड देन आई पिक अप दोज फ्रैगमेंट्स एज वेल, एंड आई कीप ऑन क्रिएटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दोज वेरी सिंपल थिंग्स। क्या है, मैं कुंडी खोलने की बात कर रही हूँ है ना, बट वाई डज इट साउंड सो रिलेटेबल कि जैसे ही मैं बात करूँ तो आपको वो साउंड आपको लगे कि अरे हाँ आई कैन हेयर दैट। जब बाल्टी की बात करो अचानक से आपको अपने घर की वो लाल बाल्टी याद आ जाए, है ना। सो वाई इट हैपन्स बिकॉज कहीं ना कहीं आर हार्ट इज स्टिल देयर, राइट, एंड व्हेनेवर दिस शो हैपन्स योर राइट इज हार्ट इज राइट हियर विद मी, है ना। अब ये हार्ट को थोड़ा सा संभाल के रखें क्योंकि अब हम अगला एपिसोड लेकर अगले हफ्ते हाजिर हो जाएंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
4: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली। Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सरु जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्त रफ्त देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
2: Singapore, prepare for impact.
3: 3, 2, 1.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
7: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
8: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
4: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
3: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
1: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई, और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
4: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है Masti Mornings Meri Jaan.
2: For show timings, check out the Radio Masti app now. Josh
3: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: जोश में रहो। जी हाँ, बिल्कुल, जोश में रखने के लिए और कौन है, मैं ही तो हूँ। याद और याद, याद और याद को बुलाने में आ गई याद, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। अब जी में है कि उनको भुला कर भी देख लें, अब तो उनकी याद भी नहीं आती। मेरी याद आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये तो

0: बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती टॉप चार्ट्स की याद तो आई होगी, चाहे कोई भी आ जाए। हेलो हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज रेणुका विद यू। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो मस्ती 24/7 पर शिफ्ट हो चुका है फ्राइडे से थर्सडे, एंड ये फुली एनर्जाइजिंग शो जो होता है इसमें मिलते हैं आप और हम। क्यों मिलते हैं? वेल दैट्स बिकॉज यू एंड आई बोथ आर हंग्री फॉर, पूरा बोलने दो, हंग्री पे रुक मत जाओ, फॉर द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड व्हाट हैपेंड दिस वीक। जी हाँ बिल्कुल, मस्ती टॉप चार्ट्स में क्या चल रहा था, हम इन गानों को पूरे एक हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं लड़ो मरो जो भी करो, लेकिन एंड ऑफ द वीक हमें रिजल्ट बता देना कि नंबर वन पर कौन है, राइट? तो इन्होंने सोचा चलिए भाई बता ही देते हैं, क्योंकि नंबर 20 पर जो गाना है वो पिछले हफ्ते मैंने कहा था ये निकल जाएगा, पक्की बात है निकल जाएगा, 17 पर पहुंच गया था। हाँ, लेकिन इसने कहीं ना कहीं से अपनी टांग को अड़ा के रखा है और निकलने से मना किया है, शायद इसलिए बिकॉज इट्स सो सिंबॉलिक। उनको लगा भाई एवरीबॉडी को वेलकम करने के लिए इससे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है, सो आई डोंट हैव टू से इट, बट यू गाइज नो एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर, राइट? रेडियो मस्ती 24/7, इट्स टाइम फॉर रेणुका एंड मस्ती टॉप चार्ट्स, एंड ऑफ कोर्स वेलकम गाना नंबर 20। वापस आते हैं, बातें करेंगे फुल टू बॉलीवुड की गॉसिप। जी हाँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस शो इज ऑल अबाउट, एंड यस, यू एंड आई आर गोना हैव फन टिल वी डिसाइड नंबर वन पर कौन सा गाना होना चाहिए आज के दिन में। हैव एन ऑसम नेक्स्ट 3 hours रोलर कोस्टर विद मी गाइज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू से टू मी देन यू नो हाउ टू रीच मी, इट इज 9151896 3। आई एम वेटिंग।
1: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। Trending song number 20.

वेलकम वेलकम वेलकम जी हाँ, यहाँ पर रेणुका भी आपको कर रही है वेलकम। दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एब्सोल्युटली लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज। इज योर गर्ल रेणुका एंड ऑफ कोर्स दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। सुन रहे हैं आप गाना नंबर 20 जो पिछले हफ्ते था 17 नंबर पर, इस समय लुढ़क के आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है इस गाने को यहाँ रहना चाहिए बिकॉज इट्स सच एन अमेजिंग वे टू वेलकम यू गाइस राइट। 100 करोड़ जी हाँ क्रॉस कर चुकी है ये फिल्म। आपने नहीं देखी है तो अभी कुछ आखिरी सांस गिन रही है, सिंगापुर में जाके देखिए इस वीकेंड पर।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर। थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

और आज आपको पिघालने के लिए आई प्रॉमिस यू जब भी हमें मौका मिलेगा हमारे टॉप चार्ट्स के बीच में वी विल प्ले द मोस्ट रोमांटिक गानास. ऑलराइट, यू ट्यून्ड इन राइट नाउ टू आरडी बर्मन्स किशोर कुमार एंड अनेट्स वॉइस एंड दिस इज सत्ते पे सत्ता. जी हाँ, दिल

0: यही कहा था जब ये शो शुरू होगा, जी हाँ मस्ती टॉप चार्ट्स और हमारी ही आवाजों में शुरू होगा, पल में पिघल जाओगे, कब तक हमें तरसाओगे, तड़पाओगे, आ ही जाओगे, जी हाँ। तो आ गए ना धीरे धीरे करके हेलो रेनुका करने के लिए। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: Masti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka!
0: Absolutely, your darling is on the airwaves. अब से लेके पूरे 8 बजे तक आपके साथ टिकी रहूंगी यहाँ पर। और बात कर रहे थे प्यार की, right? So यार ये प्यार जो है इसकी डेफिनेशन भी कुछ अलग ही होती चली जा रही है, नहीं? And on Masti Top Chart. So before I play gana number 19, I do want to remind you guys that ये जो फिल्में हैं ना, ये प्यार की डेफिनेशन अपने आप बदल देती हैं। अब हाल ही में देखिए, हमारी जो ये जानवी कपूर हैं, जी हाँ, she was featuring in Ram Charan's Paddy earlier this year, right? And इनका जो portrayal था ना of a character, काफी sexualization हो रही थी, and the actress disappointed us, frankly. She definitely disappointed me. मतलब काफी हफ्ते हो गए थे कियारा अडवाणी के scenes in यश की अपकमिंग मूवी Toxic, a fairy tale for grown-ups, वो भी एक टॉकिंग पॉइंट बना हुआ था, लेकिन इस समय ओह माय गॉड, जानवी कपूर एब्सोल्युटली द टॉकिंग पॉइंट। अब कहते हैं ना कि यार पॉपुलर होना किसी भी हाल में ठीक है, मतलब पॉपुलर तो हुए, नाम तो हुआ, बदनाम ही सही, राइट? लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि सभी के सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं रामचरण को। तो सीन कुछ ऐसा था कि इस फिल्म में पेडी में, राइट, रामचरण के कैरेक्टर ने ऑब्जेक्टिफाई किया फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जानवी कपूर को। कैसे? ओके, सो समबडी आस्क्ड दैट गाय इन द फिल्म कि वो जानवी को कैसे पहचानेगा, तो उसने कहा चेहरा देखकर नहीं कमरिया से पहचान लूंगा, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट सेंटेंस। द सेकंड सेंटेंस वाज उस छोकरी का हमें सब कुछ पता है बस चेहरा छोड़कर, एंड देन द फॉलोइंग नाइट ही एक्चुअली एंटर्स हर हाउस एंड फोर्सिबली किसेस हर व्हाइल शी इज सेइंग नहीं नहीं नहीं। ओके, नाउ हाउ वुड यू कैरेक्टराइज दैट? सो डायरेक्टर का कहना है कि भाई ये तो हम एक बड़ा ही प्लेफुल सा रोमांस दिखा रहे थे हीरो और हीरोइन के बीच में, और हमारा और आपका क्या कहना है? ओह, हम चुप ही रहे तो ठीक है। वेल, सो After this kind of a debate, all the Bollywood actresses are said to be too scared to work in Telugu films. Yes or yes? Chaliya, kya gana hai? Apna chehra dikha, Darish. आप में से जितने लोग तरस गए हैं इस टाइम अलका याग्निक की आवाज सुनने के लिए, as I always say, week after week, this is a gana where you can actually hear her voice. जी हाँ, because this was the last song she recorded before उनको जो भी प्रॉब्लम चल रही है फिजिकली वो हुई। इसके बाद गाना नंबर 18,
2: गुलाबी साड़ी अणि लाली लाल लाल,
0: which made its entry last week on number 20. समय आ चुका है 18 नंबर पर। Sounds very very promising guys, धमाल 4 के साउंडट्रैक से वाला गाना। Well, we are going to listen to these two back to back right now. Radio Masti 24/7 पर Renuka is right here. In case you want to say a quick hi, well, I am here. और देखिए ना, दिशा डार्लिंग कह रही हैं, अरे जब तुम थर्सडे को आ जाती हो तो हमें फ्राइडे लगता है, तो फ्राइडे समझ के कल छुट्टी मार लो, गुटली टोटल, आजा मेरे साथ चाय पियेंगे।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
4: Check it out.
5: Trending song. Number 19.
6: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है, ऐ मेरी प्यारी।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Trending song number 18.

0: ओहो, क्या धमाल गाना है। मतलब वाकई फिल्म का जो नाम है वैसा ही गाना है, नहीं आपको क्या लगता है? और ये है 5:26 पर रेणुका विद यू।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: सुनो, हमको पैसे नहीं मिले हैं धमाल 4 को प्रमोट करने के लिए, बट फॉर सम रीजन मुझे बहुत मन कर रहा है देखने का। सीरियसली, अजय देवगन, अर्षद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमाय, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता। वैसे तो ना जब किसी फिल्म में बड़े सारे ऐसे नाम होते हैं ना, तो मुझे लगता है सारे घुसाए हुए हैं कि भैया किसी के 10 फैन तो आएंगे ना, और 10 आएंगे 10 times 10, 100 लोग तो आएंगे ही आएंगे, राइट? सो ऑन रेडियो मस्ती गाइस, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंद्र कुमार की फिल्म? जी हाँ, जिसको प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने, और इस बार अनिल कपूर को नहीं लिया है। एंड दैट इज व्हाई अनिल कपूर मजाक किया और बोला कि भाई इस बार मुझे धमाल में नहीं लिया। क्या बात है, अजय देवगन को क्या मैं पसंद नहीं हूं? अंदर ही अंदर कुछ तो होगा, ऐसे कमेंट कोई बाहर आगे नहीं मारता, राइट? राइट, आप और हम भी तो टॉन्ट रूंट में हंस के मार जाते हैं ना, क्योंकि हमें किसी को कोई मैसेज वैसेज पहुंचाना होता है। यू नो व्हाट आई मीन एंड यू एक्चुअली नो व्हाट आई मीन, राइट? एंड द गाना नंबर 17, इट्स सच अ टंडन ऑन द वोकल्स। इसमें एंड में तबला सुनना, गाना नहीं आ रहा था टॉप चार्ट्स में। ओए होए, वो तबला जैसे सुना ना मैंने कहा बॉस ये गाना आना ही चाहिए, है ना, हमारे टॉप चार्ट्स में। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7, आई वांट टू लीव यू राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट म्यूजिकल ब्रेक, बट गिव यू वन थॉट टू च्यू ऑन, ऑलराइट? व्हाट इफ दिलजीत दोसांझ इज अ यूएस सिटीजन नाउ, पिछले 4 सालों से? व्हाट इफ, आप मानोगे या नहीं मानोगे? देखिए, ऐसा है, धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। क्या लगता है? बाय द वे, अल्फा देखी कि नहीं देखी?
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: They were not chosen. They were created.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: अल्फा,
3: अल्फा, the newest chapter in the YRF spy universe.
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
7: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
8: It's time for
2: Musty Song of the Hour.
9: Song of the Hour.

एंड एज आई सेड, आज की शाम रोमांटिक से रोमांटिक गाने चलेंगे इन बिटवीन आवर मस्ती टॉक चार्ट्स। अगर आपको बहुत ही रोमांस आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है, और मुझे बताना कि आपको कौन सा ऐसा गाना टोटली टर्न ऑन करता है, एंड आई प्रॉमिस टू प्ले दैट फॉर यू गाइस। दिस इज दबंग एंड श्रेया घोषाल, सोनू निगम ऑन द वोकल्स।

0: सपने दे दो हमें, क्या बात है. मतलब ऐसे ऐसे लिरिक्स लिख देते हैं यार, और स्पेशली इफ इट इज पेंड सो ब्यूटिफुली हार्टफेल्ट बाय कौसर मुनीम, तो मुझे तो लगता है कि यार इस गाने को पूरे दिन सुनते रहो. हैव यू लाइक्ड इट और हैव यू लाइक्ड इट? दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20. तो भाई जॉइन तो आप कर ही चुके हैं, तो क्यों ना हम आपको बता दें कि ये जो अभी भी आपने गाना सुना, दैट इज ऑन नंबर 17, अ टोटली न्यू एंट्री, एंड दिस इज कॉल्ड साथ. साथ, साथ नहीं, साथ. इट्स अ सोलफुल रोमांटिक सिंगल बाय द हस्बैंड एंड वाइफ म्यूजिक डुओ. आप तो जानते हैं सच ए टंडन परंपरा, टंडन जी हाँ. अगर और कुछ नहीं तो आपको कबीर फिल्म का, कबीर सिंह फिल्म का वो वाला गाना बेख्याली, ओहो क्या गाना है, वही तो गाया था सच ए टंडन ने. और ये दोनों पता है कहाँ मिले थे? अरे यार, एक तो आप लोगों को कुछ पता वता ही नहीं होता है. वेल, सो ये दोनों मिले थे एक रियलिटी टीवी शो पर, विच वॉज कॉल्ड द वॉइस इंडिया. एंड देन ऑफकोर्स दोनों फाइनल्स में पहुंचे, बट दे लॉस्ट, राइट? और फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशनल मिक्स बनाया, विच हैपन इन 2016, और जहां जहां काम कर रहे थे वहीं पर ये सब भी चल रहा था उनके बीच में. सो फाइनली दे टाइड द नॉट ऑन 27 नवंबर 2020, एंड आई हैपन टू बी फॉलोइंग देम ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्वाइट सम टाइम. तो मैंने देखा कि इनका एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी है, एंड ऑफ कोर्स दे हैव बीन बिल्डिंग इंडिपेंडेंट पॉप डिस्कोग्राफी विद ट्रैक्स जैसे कि साथ. अब बताना बहुत कुछ, आप लोगों का ना टेस्ट होना चाहिए मेरे शो के बाद में, बिकॉज पता तो लगे सुनते कितना हो, मैं कितनी मेहनत से लेकर आती हूँ सारी की सारी खबरें. कमिंग अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 16. हैरानी की बात यह है, एक टाइम पर ये 5 नंबर पे पहुंचा था, और फिर उसके बाद 8, फिर 10, फिर 16, और अब 16 पे ही टिका हुआ है फॉर एटलीस्ट द थर्ड वीक दिस टाइम, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट. सुनते साथ साथ छाप तिलक कमिंग अप नेक्स्ट गाना नंबर 16.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: Trending song number 16.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड इवनिंग सिंगापुर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बात हो रही है मस्ती आरजे अकेडमी की, मस्ती मीडिया अकेडमी की, जहाँ पर आप सिर्फ आरजे बनना ही नहीं सीखते हैं बट यू ऑल्सो लर्न पॉडकास्ट होस्टिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, इवेंट होस्टिंग एंड वेल अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं हैं देन डेफिनेटली द कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल आ सकते हैं हमारी अकेडमी में, एंड अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं देन द बेस्ट वे टू डू इज जस्ट लॉग ऑन टू www.radiomasti.com.sg और वहीं पर आप देखेंगे एक पेज जिसका नाम है मस्ती अकेडमी सिंगापुर। जी हाँ, तो मस्ती मीडिया अकेडमी में जाइए और वहां पर पढ़ लीजिए सब कुछ। एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं पर अवेलेबल है, कॉस्ट भी वहीं पर अवेलेबल है, सारे डिटेल्स भी वहीं पर अवेलेबल है। बस और कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
6: Bollywood flashback.

हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, जब मैं ऐसा बोलती हूँ तभी कोई ना कोई आके कुछ कहता है। आप लोग तो ना तभी आते हो जब मन थोड़ा सा सेंटी टाइप हो रहा होता है। ऑलराइट, एज आई मेंशन्ड, सम ऑफ यू आर आस्किंग मी आज रेनू का बड़े रोमांटिक गाने चल रहे हैं, तो वेल मैंने प्रॉमिस किया है द इन बिटवीन फिलर्स विल मेक यू स्माइल एंड डेफिनेटली मेक यू काम डाउन।

अरे यार, प्रॉब्लम इन रोमांटिक गानों की ये है कि मैं खुद ही इतनी रोमांटिक हो जाती हूँ एंड मैं खुद ही इतनी सेंटी हो जाती हूँ कि फिर मेरे को ही लगता है कि यार बंद करो सब कुछ, बस लेट जाओ और गाने सुनो, लाइट को कर दो बिल्कुल हल्का और बस कुछ ना कहो। फिर याद आता है, हेलो, शो पे हूँ मैं। ऑन दैट नोट, वेरी गुड इवनिंग येट अगेन। इट्स 5:52 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज रेणुका विद यू रेडियो मसी 24/7 पर। जी हाँ, क्या चल रहा है? मसी टॉप चार्ट चल रहा है बॉस। अगर आप सोच रहे हो कि अब अभी अभी आकर बड़े मतलब मेरे से इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे हो आप, तो बेटा मुझे समझ आ जाती है कौन कब आया। ठीक है, कभी कभी खामोशी का मतलब भाड़ में जा भी होता है, लेकिन इतना बता दूं, अगर मैंने ये ना पढ़ा होता ना कि अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये काम तो पड़ोसियों और रिश्तेदार का होता है, इसीलिए मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती कि आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऑलराइट, वेल, इसी बात पर मुझे लगता है कि मुझे अगला गाना जो नंबर 15 पर है वो आपको बता देना चाहिए इस टाइम पर, बिकॉज इस घंटे में वही गाना चलेगा राइट इन द एंड। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट आवर एंड ऑफ कोर्स प्ले द नेक्स्ट गाना फॉर यू, फिलहाल के लिए नंबर 15।

0: मुझे तो एक ही इंसान दिसदा है एंड दैट इज रुचिका। जब भी वो आती है और मुझे आके बोलती है ना हाय हाय, तो मेरे को लगता है बस मेरी इवनिंग तो बन गई। ऑन दैट नोट गाइज, आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट हियर एंड आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट गाना फॉर यू कमिंग अप। लेकिन हाँ, डोंट फॉरगेट टू आंसर जो मैंने सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, विच इज अगर दिलजीत दोसांझ US सिटीजन है और कुछ साल पहले कन्वर्ट हो गया तो ये बात आपको पता लगेगी तो दिल टूटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बताओ बताओ 9151896 3 पर।
1: They are fresh. They are.

और यही वाले जो गाने हैं ना, दे मेक मी वंडर मैन, व्हाट आर वी गोना डू विदाउट अरिजीत सिंह. सीरियसली, रिटायरमेंट की ना उम्र है ना जरूरत है यार, हम लोगों का क्या होगा. सीरियसली, दिस नोबडी हु कैन रिप्लेस दिस अमेजिंग मेस्मराइजिंग वॉइस. जी हाँ, रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स विद रेणुका. स्टे ट्यून्ड, 8 बजे तक बिल्कुल यहीं पर रहेंगे साथ साथ.

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: देख लो ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर ओरिजिनल गुंडा इस तरह की बातें बनाई हुई हैं हमारी प्रोग्रामिंग मैनेजर ने यहाँ पर और मैं उसी पर आकर अपना शो भी करती हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग 6 बजने के उस पार आप और मैं जी हाँ यहाँ पर मस्ती टॉप चार्ट। तो भाई कौन कौन इस समय जिम में है बताइए हमें जरा व्हाट्सएप कीजिए। हमारे ऐप के अंदर ही टॉप राइट कॉर्नर पर व्हाट्सएप का आइकॉन बना हुआ है वहीं से कर दीजिए डायरेक्ट बिल्कुल हिट होगा हमारे यहाँ पर सिस्टम पर और हम देखेंगे कि क्या कौन कौन इस समय कसरत करने पर लगा हुआ है। हाल ही में मेरे कसरत करने पर काफ़ी मजाक उड़ाया हमारी कुछ टीम के लोगों ने और उनसे बदला लिया जा रहा है। इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस बट फिलहाल के लिए भाई अब क्या करें मैं इतनी ग्लैमरस हूँ ना तो व्हाट टू डू जिम जाना जिम से बाहर आना पता ही नहीं लगता।

0: ऑलराइट भाई, सीरियसली वेइंग मशीन पे भी पता नहीं लग रहा आजकल कि कुछ कम भी हो रहा है कि नहीं. बट ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, द थिंग दैट आई बीन आस्किंग फॉर द पास्ट फ्यू मिनट्स इज दिलजीत दोसांझ एंड हिज यूएस सिटीजनशिप की क्वेरी. वेल, है कि नहीं है, इंडियन सिटीजन है भी सही, या मतलब ये जो फ्रीली घूमे जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो क्या चल रहा है? सो जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था दिलजीत दोसांझ यूएस सिटीजन है सिंस 2022. जी हाँ, लेकिन पब्लिकली दिलजीत दोसांझ ने आज तक ना कंफर्म किया है और ना ही डिनाई करी है ये वाली रिपोर्ट. तो एक हाल ही में इंस्टाग्राम सेशन हो रहा था इसी हफ्ते में, वेयर ही रेज्ड कंसर्न्स अबाउट हिज फिल्म सतलुज बीइंग बैंड इन इंडिया. तो एक फैन ने सजेस्ट किया कि भाई तुम एक काम करो ना, यूएस ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लो. सो रादर देन एड्रेस द स्पेकुलेशन सराउंडिंग हिज सिटीजनशिप, दिलजीत ने हंस के कहा, मैं तो कोई भी कार्ड ले लूंगा और उसको हरा रंग कर दूंगा. ऑल राइट, वेल हम अच्छे से जानते हैं बॉस कि इनकी जो पत्नी है ना, वो यूएस सिटीजन थी. जी हाँ, संदीप कौर की बात कर रही हूँ मैं. एंड इन 2018 इनका इंडियन पासपोर्ट इशू हुआ था, लेकिन 2022 में इन्होंने जब अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था ना, तो उसमें एक 5-bedroom का बंगलो कैलिफोर्निया में इन्होंने अपना रेजिडेंस भी दिखाया था. नाउ द पॉइंट इज, आज के दिन में सिटीजनशिप है या नहीं है, बताएंगे या छुपाएंगे? That is गाना नंबर 14. जी हाँ, which was number 14 last week as well. और यहाँ पर दिलजीत दोसांझ के जो सारे के सारे फैंस हैं ना, उनके कान नाक मुंह सब खुलने लग गए और साथ ही साथ में उंगलियां भी खुल गई अचानक से. अच्छा, दिलजीत की बात कर रहे हो? कर रही थी, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई. और देखो, जहाँ हमने बोला कि हमें याद आ रही है कुछ कुछ लोगों की और हम आज रोमांटिक गाने चलाएंगे, तो देखो ना, संजय जी पधारे हैं आफ्टर एजेस. संजय तो नहीं, बट संजॉय वाला गाना जरूर चला रही हूँ इस टाइम पर, विच इज ऑन नंबर 14. Stay tuned guys, this is Renuka with you right up to 8 in the evening, and of course this is Musti Top Charts.
1: Hit us on the gram, it's Radio Musti 24/7, and don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song number 14.

0: वाकई क्या गाना है, मतलब और क्या लग रही है नूरा फतेही यार। अगर आप इसका वीडियो देखोगे ना, आपको लगेगा ओ हो अल्लाह अल्लाह रे बाबा या बीबी या बाबा लिक या बाबा, मतलब बिल्कुल ही घटिया गा रही हूँ मैं इस टाइम, बट अल्लाह अल्लाह या बाबा विस्लम अलिक या बाबा। मेरा भी यहाँ पे ना कुर्सी पे बैठे बैठे बेली डांस चल रहा है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इट्स अबाउट 6:08 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड ऑफ कोर्स इट्स रेणुका विद यू।
1: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
0: भाई ऐसा है कि हम कहते हैं 11 मुल्कों की पुलिस लगा देते हैं हम उन लोगों के पीछे जो गायब हो जाते हैं हमारे जिंदगी से या कोशिश करते हैं। ऑलराइट, उनमें से एक है हमारे संजय जी। हमने जैसे पूछा जिम में कौन है तो ये लड़का पकड़ा गया, कहता है जिम में हूँ। और कभी कभी पता है क्या होता है, ये हमेशा SMS भेज देते हैं हमको, SMS, जबकि हम बोलते हैं WhatsApp भेजो। ना जी ना, इन्होंने तो SMS ही भेजना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज हम नहीं पढ़ पाते भैया, बहुत मैसेजेस होते हैं। तो फिर शो के बाद जब नजर आती है तो हम कहते हैं अबे यार फिर से मिस हो गया। तो आज मैंने इनको धर दपोचा है हर तरफ से, एक तरफ टेक्स्ट भेज रहे एक तरफ WhatsApp भेज रहे, मैंने हर तरफ से इनको पकड़ लिया। एंड ऑफ कोर्स ही इज राइट हियर एंजॉयिंग हिमसेल्फ इन द जिम। आई होप आपने कुछ बेली डांसिंग भी कर ली होगी। वेल आई एम गोइंग टू ट्राई एंड प्ले गाना नंबर 13, which I'm not sure if it's peppy enough for the gym. अरे एब्सोल्युटली मजेदार गाना है भाई साहब, कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से। मैं तो मूवी देखकर आई हूँ हाल ही में, आई एम इन लव विद द हॉटनेस ऑफ दिस फिल्म एब्सोल्युटली। मतलब मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों बोला कि उन्होंने नहीं देखी है, मैं तो कहती हूँ देखो देखो। एंड द अदर फिल्म दैट यू मस्ट वॉच इज प्लेइंग राइट नाउ इन सिंगापुर इज अल्फा गाइज। यहाँ पर अल्फा का कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, इनकेस यू गाइज आर गोइंग टू वॉच अल्फा अब से लेकर संडे तक, तो आप अपनी टिकट का स्टब हमें भेज सकते हैं टू गेट रीइंबर्स्ड। और चाहिए फ्री पे टिकट देखो वो भी हम पे। ऑल यू गॉट टेल मी इज आपकी जिंदगी की अल्फा वुमन कौन है, कुड बी एनीबॉडी राइट। बताइए बताइए 9151896 3 पर।
2: They were not chosen. उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: अल्फा द न्यूएस्ट चैप्टर इन द YRF स्पाई यूनिवर्स,
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
3: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू, ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
6: Trending song number 13.

0: कूल डाउन गाइस, गाइस इन द जिम, कूल डाउन। यहाँ पर अजय कुलकर्णी ने भी मुझे लिखा, मैं भी जिम में हूँ। बेटे इतना ढीला गाना चलाऊंगी ना इसके बाद, इतना ढीला गाना कि दोनों के दोनों जितने भी यहाँ पर हैं जिम वाले लोग उतर के साइड पे ना, मतलब रोमांटिक तरीके से डंबल्स उठाएंगे, रोमांटिक तरीके से अपने वेट्स उठाएंगे और रोमांटिक तरीके से ट्रेडमिल पर चलेंगे, देखना चाल ही बदल जाएगी। फिलहाल के लिए ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, इट्स मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर। जैसा कि मैंने कहा था, आज ये सारे जो फिलर वाले गाने हैं आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रोमांटिक, एंड दिस वन इज किशोर कुमार एंड गेस गेस गेस सिलसिला के साउंड ट्रैक से। ओए होए, ओए होए, ओए होए,
1: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

और एक और रोमांटिक गाना सुन रहे हैं, जिम से हैं हमारे श्रेनिक। श्रेनिक जी उतर जाओ, साइड पर आ जाओ, इस टाइम सिर्फ अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को याद करो, बस 5 मिनट और 6 सेकंड के लिए, उसके बाद चलाऊंगी बहुत ही बढ़िया जोर से गाना। कूल डाउन गाइज़।

आई कैन ऑलरेडी सी यू गाइस वॉकिंग लाइक रिक्शा वाला साइकिल चला रहा है ऑन द ट्रेडमिल, ऐसे ऐसे झूम झूम के कहीं लचक ना जाए. As Ajay says, he's handling the dumbbell with tender care now.

0: Oh my god, what a romantic gana, guys. I hope you are enjoying this one. Of course, I have apologized individually to all those who written, yaar thoda sa tempo tez kar, bilkul karne wali hu right after this one, I promise you guys. It's about 6:19 by the studio clock. Lekin mera sawal ye hai ki koi bhi ladki gym mein kyun nahi hai, matlab kya chal raha hai yahan par bhi, gender mein kyun inequality chal rahi hai yaar, matlab I wanna play the best of tracks obviously. And do you know Bollywood report card 2026 is now आउट, और एक ऐसी फिल्म है जिसने आउट अर्न किया है पूरा का पूरा बॉलीवुड कंबाइंड, और उस डायरेक्टर ने हिंदी सिनेमा को वाकई बचाया है. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कौन सी फिल्म है वो, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट. फिलहाल के लिए गाना नंबर 12 व्हिच इज कमिंग अप इज दैट इज कॉकटेल 2. ओह माय गॉड, द सिजलिंग सिजलिंग कृति सानन. And of course, Ishq Kameena 2, that is Baby Do Die Do. Ji haan, is track se milne wala ye wala gana right now. Back to back, well, the best of songs coming on Musti Top Charts just for you.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: Trending song, number 12.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho. Trending song number 11.
3: Qatl karti hain nigahein ki dil ko khabar na ho. Zakhm deti hai aisa ki dard ka asar na ho. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: गाइस, इज इट ओनली मी या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आजकल नए गाने बन नहीं रहे और पुराने वालों को ही घिस घिस के 2.0 वर्जन करके बुलाए चले जा रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन, कहां है क्रिएटिविटी?
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सिंगापुर जैसी जगह पर घूस देना बिल्कुल ना ना ना ना ना। कोशिश हो रही है। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि देखिए ना, आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं, बिल्कुल इट्स फन इंटरैक्टिंग दिस वे, ठीक है। और किसी ने यहाँ पर मुझे ये भी लिखा, आई एग्री कि सिलसिला पर जरा वर्कआउट करना मुश्किल है, बट बिसाइड्स द सॉन्ग इट्स मोस्टली द टॉक फ्रॉम यू ऑल दैट बिल्ड्स अप द टेम्पो। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फॉर एंटरटेनिंग अस, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। जी हाँ, बिल्कुल ये जो चल रहा है ना यहाँ पर कि देखो प्लीज गाने अच्छे वाले चला दो कि एनर्जी भर भर के आए। तो भैया ऐसे इसमें मेरे दो नुकसान है, एक तो ये कि आप लोग वर्कआउट कर लोगे, आप लोग फिट हो जाओगे, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठे बस सिर्फ कभी कुछ खाया कभी कुछ पिया और मतलब इस तरह से बैठी रह जाऊंगी, तो बड़ा नुकसान है। दूसरी बात क्या है कि आप सब जाओगे यहाँ से टोटल एनर्जाइज होके घर वालों को दुखी करोगे। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे गाने चलाऊं जिससे कि शांत होके आप लोग अपने अपने घर पहुंचो। तो ऐसा है कि अभी अभी जो आपने गाना सुना था, वेल दैट वॉज फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ द न्यू फिल्म जो कि आ रही है हुमा कुरैशी और रचित सिंह की। जी हाँ, इट्स कॉल्ड बेबी डू डाई डू और इश्क कमीना 2.0 इज फ्रॉम दैट, विच वॉज गाना नंबर 11। कमिंग अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 10, विच इज अगेन। देखा, एक रीमिक्स येट अगेन 2.0 फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। तो सुनते हैं ये वाला गाना एंड ऑफकोर्स फॉलोड बाय अनदर ब्यूटिफुल लव गाना कमिंग अप इन जस्ट अ लिटिल बिट। इट्स अबाउट 6:28 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज रेणुका विद यू राइट अप टू 8 इन द इवनिंग। स्टे ट्यून्ड,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Trending song number 10.

0: ओए क्या गाना है भाई, मतलब आनंद राज आनंद एंड कल्पना पटोवरी ऑन द वोकल्स। ये गाना जो भी आप सुन रहे थे, ऊंचा लंबा कद, जी हाँ बिल्कुल। तो भाई ऐसा है कि आई मेट आनंद राज आनंद एक्चुअली जो मैंने पहला स्टेज पर एक शो होस्ट किया था, विच वॉज मेनी इयर्स अगो, आई वुड से मोर देन अ डेकेड बैक। तो तब मुझे ये मिले थे एंड ही वाज रियली स्वीट व्हेन आई वाज होस्टिंग। ही केम अप टू मी एंड सेड, आप कितना अच्छा बोलती हैं। मैंने कहा ओए होए, काश मैं कह सकती कि आप भी उतना ही अच्छा गाना गाते हैं। Bad Renuka, very bad. They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti Top 20. But a very sweet guy, for sure. इसीलिए तो मुझे आज तक याद है। और आपको पता आज बाजार में आग लग गई, यू नो दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल दोस पीपल टॉक ना, वो जो शेयर मार्केट वाला धंधा। जी हाँ बिल्कुल, आग लग गई आग बाजार में। आज आपको पता है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जो है ना इनटू द सिंगापुर मार्केट, इट्स ड्राइविंग द लोकल बैंक्स इनटू एन एरिया जहां पर वो कभी नहीं पहुंचे। आप सोचिए आज DBS, जी DBS DO5 +1.64% शेयर्स आज तो $70 से भी ऊपर पहली बार, जी हाँ पहली बार। एंड द काउंटर रोज 1.6% to close at 70.23. आज की बात कर रही हूँ शाम की। एंड द शेयर्स ऑफ OCBC, UOB, जी हाँ वो भी रिकॉर्ड हाईज पे आज थे, क्योंकि 2% और 2.3% रिस्पेक्टिवली दोनों के दोनों बड़े हैं आज के दिन में। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स, इट वाज अप 1.2% एज वेल, 5433.88 पॉइंट्स। आज तो कमाल हो गया, इसीलिए तो बोल रही हूँ बाजार में आग लग गई। एंड दिस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन कम्स एज इन्वेस्ट Investors are getting a foot in ahead of the upcoming corporate earnings season, जो कि अगस्त में होता है। So ये तीनों के तीनों banks historically offer करते हैं robust yields and traders जो है actively lock in कर रहे हैं अपने shares to capture the first half dividend payout। तो अगर आप already इनके shares लेके बैठे हैं तो आपकी तो मतलब निकल पड़ी आज के दिन में, और अगर नहीं ली है तो too late हो गया बेटा। That's gun number 9. फिल्म का नाम बताने में हमेशा शर्म आती है, इस कॉल्ड माँ बहन। अब आगे क्या ही बोलूं, रेडियो मस्ती 24/7 पर कमिंग अप अ ब्यूटीफुल गाना विच इज अ रोमांटिक गाना, जी हाँ साथ में सुनेंगे।
1: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। Hollywood flashback. Flashback.

0: और मेरा जी अरा धक धक किया जब मैंने यहाँ पर देखा देवेंद्र जी का मैसेज। उन्होंने कहा हेलो रेणुका जी, हाउ आर यू। मैंने कहा देवेंद्र जी मैं बहुत डर रही हूँ, कैसे हैं आप। और फिर मुझे स्टार्स भेजे उन्होंने और कहा आपका स्वागत है, बेस्ट रिगार्ड्स। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, क्योंकि स्टार्स मेरे लिए, लेकिन सुपर स्टार तो देवेंद्र जी आप हैं। वेरी गुड इवनिंग, बड़े दिनों के बाद आपके साथ बातचीत हो रही है एंड सो सो सो हैप्पी। पता है आप लोगों को, देवेंद्र जी हमारे साथ मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 से जुड़े हैं एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, ऑलवेज अ वेल विशर, अमेजिंग।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: आपकी डार्लिंग यहाँ पर आपके साथ है पूरे 8 बजे तक। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताना चाहूंगी, ये जो मैसेजेस पीछे आवाजें आती जा रही हैं, क्या करूं, मेरी पॉपुलैरिटी उफ उफ उफ कहां तक लेके जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वाइब्रेशन चल रही है बड़ी सारी चीजों की। बट एनीवे, ऑन रेडियो मस्ती गाइस, आई गॉट टेल यू कि अभी जो आप गाना सुन रहे थे, विच वाज गाना नंबर 9, धक धक रीलोडेड, माधुरी दीक्षित एंड ऑफ कोर्स आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, जो कि ओरिजिनल वाला धक धक है, लेकिन साथ ही में नुपुर खेडकर एज वेल। एंड दिस म्यूजिक हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय अक्षय रहेजा एंड अभिषेक सिंह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये फिल्म देखी है कि नहीं। इट्स कॉल्ड माँ बहन। वेल फ्रैंकली माँ बहन ही हो जाती है इसको देखने के बाद, लेकिन जब मैंने देखी ये फिल्म मुझे लगा ओके, बाद में समझ में आती है, यू नो व्हाई, बिकॉज देर इज सो मच रियली। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइज, फिलहाल के लिए ओहो हमारे जो श्रेनिक जी हैं उन्होंने तो अपना वर्कआउट खत्म कर लिया था बिफोर आई प्लेड द स्लो ट्रैक। आई विश अगली बार मैं इनको बिल्कुल टाइम पर पकड़ूंगी। एंड यू नो व्हाट, ही इज सेइंग समथिंग अमेजिंग। ही सेज फॉर श्योर आई हैवंट चेंज्ड टू एनी अदर सॉन्ग और ऐप सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि मैं कभी मिस नहीं करता टू ट्यून इन टू रेडियो मस्ती एट द जिम। ओ माई गॉड, मैं कहती हूँ व्हाट एन अमेजिंग टेस्ट यू हैव मैन। आपके घर में जितने भी लोग हैं वो कितने लकी हैं, क्योंकि आपका इतना अमेजिंग टेस्ट है। This is है जवानी तो इश्क होना है, जी हाँ। अगेन मुझे लग रहा है पिछले 5 गाने हैव ओनली बीन रीमिक्स वर्जन्स एंड 2.0 रिलीजेस ऑफ द पुराना गानास। अगेन माय क्वेश्चन इज, कहाँ गई क्रिएटिविटी, कहाँ है वो सारे सॉन्ग राइटर्स, कहाँ गए सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स। उफ, मुझे ही जाना पड़ेगा।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 8।

0: उफ, ये गाना एंड दिस गाने का ही ओरिजिनल वर्जन का जो वीडियो है विच इज ऑन आवर फेसबुक पेज राइट नाउ, लुक एट द स्टेप्स. मैं कहती हूँ कोरियोग्राफर क्या सोच रहा था, उसने सुष्मिता सेन को बोला जो तुझे आता है वो कर बहन, और सलमान खान को बोला जो तुझे आता है भाई तू वो कर. ठीक है, दोनों क्या डांस कर रहे हैं सीरियसली. आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देखिए, आप भी यही सवाल पूछेंगे भाई मतलब कहना क्या चाहते हो.
1: They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti Top 20.
0: Masti Top 20 पर इस समय रेनुका आपके साथ, रेडियो Masti 24/7 पर चल रहा है Masti Top 20 या Masti Top Charts as I love to call it. जी हाँ, इस पूरे हफ्ते के अब शुरू हो रही है लड़ाइयाँ. ठीक है, अब से लेकर गाना नंबर एक तक इतनी लड़ाइयाँ होंगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे सुनने वाले भी मुझे यहाँ पर अभी माँ बहन का गाना सुना था ना, समथिंग टू दैट इफेक्ट, मुझे यहाँ पर लिख के मतलब बोलते ये गाना कैसे इस नंबर पे पहुंचा, ये गाना कैसे पहुंचा. एंड दैट्स द फन ऑफ इट ऑल गाइज. आज का गाना नंबर एक कौन सा होने वाला है, बट यू गॉट टू टेल मी स्टार्टिंग नाउ. ऑलराइट, और मैं आपको मिलूंगी अगले घंटे, लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना विच इज अवेटिंग यू इज ओए होए, जब तक है जान, जब तक है जान.
2: सांस मिली तो मुझे सांस आई.
0: So, जिस जिसकी सांस आई हुई है उन सबको यही गाना सुनाइए इसी टाइम. अ वेरी गुड इवनिंग.
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

जी बिल्कुल, ये अस्थमा की कंप्लेन करता हुआ गाना श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजें राइट नाउ जब तक है जाम। रेडियो मस्ती 24/7 पर, इट्स अबाउट 6:53 बाय द स्टूडियो क्लॉक। इसके बाद एक गाना नंबर 7 है, विच इज कमाल का गाना है यार।

0: चलो यार, सांस तो आई, मेरे को तो परेशानी हो गई थी। मैं तो सीरियसली मैं तो एम्बुलेंस को बुलाने वाली थी इस टाइम पर। ओह माय गॉड, सांस नहीं आ रहा किसी को। हम यहाँ बैठ के गाने सुन रहे हैं, क्या चल रहा है ये?
1: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out. Trending song number 7.

That is a soulful melody जो लेकर आता है magical voice of Diljit Dosanjh और legendary music of A.R. Rahman. इरशाद कामिल के lyrics और ये वाला गाना absolutely amazing. जी हाँ, beautifully capture करता है the emotions of love, hope and longing.

गाना नंबर 7 ऑन रेडियो मस्ती 24/7 मैं वापस आऊंगा किस साउंडट्रैक से। आपने नहीं देखी है तो आई टोटली सजेस्ट ये वाली फिल्म जाके जरूर देखिएगा। रेडियो मस्ती 24/7 पर मिलते हैं 7 बजे के उस पार फॉर द थर्ड आवर।

0: 22 रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: जैसा कि मैंने कहा आपको कुछ देर पहले, यहाँ पर मुझे OG ओरिजिनल गैंगस्टर बुलाया जाता है, मुझे ओरिजिनल गुंडा बुलाया जाता है, और फिर भी मैं यहाँ पर खुशी खुशी आके अपना शो होस्ट करती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। दिस इज रेणुका विद यू, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स, जो इस बार अच्छी हाँ पिछले हफ्ते से थर्सडे को शिफ्ट हो चुका है। पहले आई यूज्ड टू बी हियर ऑन फ्राइडे इवनिंग्स और आप सब गायब हो जाते थे, क्योंकि आप सबकी तो पार्टियां हैं ना, मतलब पार्टियां ज्यादा जरूरी थी, कोई काम करे, कोई यहाँ पर गला फाड़ फाड़ के बातें करे, लेकिन नहीं जी, इनको तो जरूरी है कि ये तो अपनी पार्टियों पर जाएंगे, इनको रेणुका से क्या लेना देना, ये तो संडे को अनकोर सुन लेंगे। लेकिन बेचारी रेणुका यहाँ पर काम कर रही है, मेहनत मुशक्कत, जी हाँ, और इतनी सारे मतलब मेहनत करने के बाद में पता लगा कि हम तो संडे को अनकोर सुनते हैं। मैंने ठीक है बेटा, मैं थर्सडे को शो करूंगी, और फ्राइडे को बेचारी पकड़ी गई मुग्धा, क्योंकि हमने एक्चुअली रेडियो मस्ती के स्टूडियोज में हमने चिट्स निकाली, और जब हमने चिट्स निकाली तो उसमें बेचारी मुग्धा का नाम आ गया फ्राइडे शाम के शो के लिए। अब क्या करें, कभी कभी बॉस होने के ना बड़े मजे भी हैं, सीरियसली। और तब से वो क्रिप मार रही है, मैं नहीं करूंगी ज्यादा दिन। हमने कहा देखो बेटा ऐसा है, अब तुम्हारी बारी आई है तो थोड़े दिन के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन चिट्स एंड ऑफकोर्स पुगन पुगाई कहते थे ना बचपन में, ओ माई गॉड आई हैवन्ट सेड दैट इन एजेस। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर 7:02 हुए हैं, और मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी हमारे बहुत ही प्यारे से आशुतोष राय जी का। जी हाँ, मैंने इनसे पहले कभी बात नहीं करी, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका मैसेज भी हमको पहली बार आया। आशुतोष जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई एम सॉरी अगर मैंने पहले बात करी और मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमने बड़े प्यार से लिखा 2009 से शुरू, और

0: बहुत अरसे के बाद फिर एक बार जुड़कर बहुत अच्छा लगा मस्ती ग्रुप। सो वेल, अब आए हो तो जाना नहीं, ठीक है? पहले जहां गए थे हम उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन अब आए हो और अब अगर छोड़ के गए हमें तो हम घर तक पहुंच जाएंगे। That is गाना नंबर 6 कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से वल्ला। We'll be listening to this one. और बहुत देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक बॉलीवुड की ऐसी फिल्म जिसने रेवेन्यूज कहां से कहां पहुंचा दिए। We'll talk about that in just a little bit. फिलहाल के लिए ये वाला गाना सुनते हैं साथ साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका आपके साथ।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: Trending song, number 6.

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: भाई बड़े मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं इस समय अल्फा से, क्योंकि हमने पैसे खाए हैं उनसे, इसीलिए हम बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे. लेकिन वैसे भी टू बी ऑनेस्ट, द फिल्म हैज सम अमेजिंग सीन्स एंड अमेजिंग एक्शन जो कि आज तक कभी स्पाई थ्रिलर में नहीं देखा गया, वो भी विमन लेड फिल्म. इवन द साउंड इज अमेजिंग. Radio Masti 24/7 पर रेणुका विद यू. द बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस यशराज फिल्म्स की लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर, जी हाँ अल्फा की बात कर रही हूँ. थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड चल रहा है उसके रिलीज से. आलिया भट्ट शर्वरी बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट थी, जी हाँ 34 करोड़ सिर्फ इंडिया में ओपनिंग वीकेंड पर मिले, लेकिन एक्साइटमेंट ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है इस टाइम पर. वेल वी आर होपिंग दैट ओवर दिस वीकेंड डेफिनेटली बढ़ जाएगी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म की. स्ट्रॉन्ग ओपनिंग तो थी ही, लेकिन स्टैगरिंग डिक्लाइन के बाद में लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी रिकवरी धीरे धीरे चल रही है फिल्म की. बट वेल, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, आई थिंक व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज अ रिव्यू फ्रॉम समबडी राइट नाउ. सो अगर आप में से किसी ने भी देखी है ये फिल्म तो प्लीज टॉक टू मी, टेक्स्ट मी 9151896 3. आई'd लव टू अंडरस्टैंड क्या कमी है या क्या बढ़िया है इस फिल्म में. ऑलराइट, 50 करोड़ का माइलस्टोन लग रहा है कि एंड ऑफ इट्स फर्स्ट वीक बिल्कुल पहुंच जाएगा, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वॉच, स्पेशली बिकॉज कल ही के दिन में रिलीज हो रही है द मल्टी स्टार कॉमेडी धमाल 4, विच कुड बी एन एडिशनल थ्रेट टू अल्फाज बॉक्स ऑफिस प्रोस्पेक्ट. फिलहाल के लिए अजय देवगन जो लीड कर रहे हैं कास्ट, धमाल 4 इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ ऑडियंसेस अवे फर्दर लिमिटिंग अल्फाज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द कमिंग वीक्स. लेकिन टोटली डिफरेंट जॉनर्स हैं एज वी नो, एक तरफ YRF की स्पाई यूनिफॉर्म यूनिवर्स और दूसरी तरफ द स्टार स्टडेड कास्ट. भाई यू आर रूइंड फॉर चॉइसेस, aren't you? फिलहाल के लिए हम आपको बताएं कि भाई यहां पर अगला गाना जो नंबर 5 पर है वो कौन सा होने वाला है. What I loved about this gana is, कैसे कोई गा सकता ना, ये वाला बहुत ही बढ़िया गाया. लेकिन साथ ही में ऑफकोर्स देवांग रैना ने जो अपना पार्ट गाया ना, ओए होए लड़के की आवाज इतनी मक्खन है मक्खन. आप सुनो और मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या चल रहा है इस मस्ती वर्स में. रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना, हाय हाय रोमांटिक, आशा भोसले किशोर कुमार और तू.
5: इट्स टाइम फॉर
6: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

यार कुछ भी कह लो, ये वादा रहा 1982 की ये वाली जो फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर, पूनम धिलन और साथ में टीना मुनीम को हमने देखा था. अमेजिंग गाना, राइट? दिस कम्स फ्रॉम ओहो, मतलब टू मच. किशोर कुमार, आशा भोसले की जो आवाजें इसमें फिट हुई हैं, एंड दिस ट्रैक इज सच एन इमोशनल डिक्लेरेशन ना ऑफ लव एंड द सर्टेनिटी ऑफ अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड. आर डी बर्मन का म्यूजिक, ओए होए, गुलशन बावरा के लिरिक्स, परफेक्ट सिनर्जी ऑफ मेलोडी एंड मीनिंगफुल वर्ड्स. 7:15, ओए होए, क्या गाना है.

0: ओहो क्या बात है भाई. द होल मकसद ऑफ यू पीपल ट्यूनिंग इन टू अस इज कि आपका मूड चेंज होना चाहिए. ऑलराइट, दैट्स व्हाट वी वांट. वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस होल day which for some of us would have been very nice, for some of us would have been tiring. Kisi ka acha din nahi nikla, kisi ka acha nikla. But eventually jab hum is platform par aate hai na, hum sab sirf aur sirf sab kuch bhula ke smile karna chahte hain. That is what Masti Media Network is all about.
1: They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti Top.
0: Har tarah ke shows hain. Dekhiye na, agar aapke man में कुछ भारी इस तरह की बात चल रही है तो हमारा है वो वाला शो विच सेज डियर मस्ती दिल से हर ट्यूसडे शाम को और थर्सडे रात को. बाय द वे उसका एनकोर आता है 9 बजे से. तो ये वाले शो में आप कुछ भी अनोनिमस करके हमको लिख सकते हैं. गालियां देनी हो किसी को, बॉस को देनी हो, घर वालों को देनी हो, रिश्तेदारों को देनी हो, या फिर कोई शिकायतें लगानी हो, या फिर कोई रास्ता ढूंढना हो जिंदगी का, यू कैन जस्ट राइट टू अस अनोनिमसली. एंड यू नो वेरी वेल कि आप सबकी बातों का जवाब हम कैसे देते हैं. बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, एक बात का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे कुछ ऑनेस्ट कन्फेशन भी करना है बाय द वे. तो पहले क्या करूं, पहले मैं ऑनेस्ट कन्फेशन कर देती हूं, ठीक है. मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का पोस्टर अपने घर में दरवाजे के पीछे लगाया है. ओके, सिर्फ एक लड़के का. मतलब आई हैव बीन सच अ फेथफुल डेडिकेटेड फैन. ऑलराइट, एंड दैट वाज अनफॉर्चुनेटली गाइस आमिर खान. जी हाँ, मैंने उसका पोस्टर अपनी अलमारी भी नहीं, घर कमरे के दरवाजे के पीछे लगाया था. एंड माय मॉम वाज ऑलवेज सो अपसेट कि जब दरवाजा बंद होता था रात को, मैं अकेली होती थी उस कमरे में, तो माय मॉम वुड से तू जानबूझ के इसके साथ में इस कमरे में अब क्या ही कर लूंगी पोस्टर के साथ. But I always used to laugh about it, all right? But then the point is that over the years, मुझे बहुत शर्म आ रही है, especially पिछले हफ्ते से, about, you know, liking this guy. मैं किसी और के लिए क्यों नहीं मैंने मतलब ऐसे काम किए. अब देखिए ना, इस टाइम पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी तीसरी शादी पर इस बंदे ने नथ पहनी, इयररिंग्स पहने और एक पायल पहनी, ठीक है, और वो भी इतनी मोटी सी पायल जो मैंने कभी लड़कियों के पाँव में भी आजकल तो बिल्कुल नहीं देखी. तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन, बिकॉज सीरियसली मतलब क्या मकसद है वो पाजेब पहनने का. पाजेब मुझे नहीं समझ आता, आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा. ये नथ और पाजेब मतलब व्हाट इज द लॉजिक.
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 5.

0: आपको पता है कि इतनी अमेजिंग सी आवाजें जो अभी हमने सुनी निलंजना घोष दस्तीदार और वेदांग रैना की, आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दैट द लिरिक्स ऑफ इरशाद कामिल एंड द म्यूजिक बाय ए आर रहमान, इन सबके होते हुए कैसे ये गाना ना पहुंचता नंबर 5 पर, आप खुद बताइए, है ना, इम्पॉसिबल। रेडियो मासी 24/7 पर रह गए गाने 4 एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट देम इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: Hit us on the gram. It's Radio Masti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Masti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
0: All right, so now that you've checked us out, I want to tell you what else you guys need to check out. Well, कुछ देर पहले मैं आपको जो बता रही थी, आप सबने बोला यार अब बता भी दो about the 2026 के numbers and the biggest movie production industry में हो क्या रहा था, जहां पर 105 फिल्में रिलीज होती देखी हमने just in the first 6 months of 2026. आपको पता है January 1st और June 30th 100 से ज्यादा फिल्में, जी हाँ, सभी ने ट्राई किया अपना लक विद द ऑडियंसेस इन द थिएटर्स। बात करें बॉलीवुड की, एंड आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग 2025, ये साल भी मतलब सभी की नजरें थी होने क्या वाला है, लेकिन पहले क्वार्टर में ही बॉलीवुड ने अपना हाईलाइट ऑफ द ईयर दे दिया, विच वॉज धुरंधर, जी हाँ, द रिवेंज, आदित्य धर की ये वाली फिल्म, जिसने I don't know how, लेकिन 1,000 crores, जी हाँ, 1,000 crores इंडस्ट्री में पहली बार बॉलीवुड ने कदम रखा, और वो भी बिकॉज ऑफ धुरंधर। लेकिन धुरंधर 2 का मैनिक रन इज़न्ट जस्ट अब द हाईलाइट ऑफ हिंदी सिनेमाज रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि पहले 6 महीने में और क्या हुआ, बाकी की कहानी तो सुनिए। कभी भी कोई भी फिल्म ऐसे डोमिनेट नहीं करी है इंडस्ट्री को टू दिस एक्सटेंट बिफोर इन ऑल इयर्स सिंस, जब से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन होने शुरू हुए हैं, मल्टीपल फिल्म्स हैव प्रॉप्ड अप, ठीक है, बड़ी सारी इधर से उधर की, भाई आधा इसने किया आधा इसने किया, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ धुरंधर 2, जी हाँ, एक ही फिल्म ने कमाए हैं इंडिया एंड ओवरसीज अदर्स देन द अदर 104 फिल्म्स कंबाइंड। अब आप सोचिए 104 फिल्में एक तरफ और धुरंधर भाई की ये 0.2 एक तरफ। इट सोल्ड मोर टिकट्स वर्ल्ड वाइड देन ओवर 100 अदर फिल्म्स पुट टुगेदर, एंड क्वाइट ऑनेस्टली अकेले ही अकेले उसने कहा यार 2026 बहुत बढ़िया हिंदी सिनेमा के लिए, क्योंकि मैं हूं ना। आई टेल यू, इसे कहते हैं धुरंधर इन द रियल सेंस। ऑल राइट, अब आज का धुरंधर कौन है बताइए भाई। 4 गाने रह गए और चारों गाने हैं ये वाले। ये गाना था पिछली बार नंबर 1 Cocktail 2 के साउंडट्रैक से, एंड द अदर गाना दैट वी हैव इन टॉप 4 इज
5: कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी
0: ओए होए पार्टी एंथम एज दे कॉल इट, एंड मुझे डांट पड़ेगी फिर से किसी से कि ये गाना कब निकलेगा टॉप चार्ट से। और एक और गाना That is Cocktail 2 as well. अब आपको मुझे बताना है कि आज के ये चारों गानों में से कौन सा होने वाला है गाना नंबर एक। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से लूंगी छोटा सा ब्रेक, आपको एक बढ़िया सा पुराना गाना सुना के, एंड बाय देन आई होप टू गेट योर रिस्पॉन्सेज। क्यों आरती जी, जो आपने आज मिस कराया आधा शो, अब बताइए बताइए बताइए।
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

और कोई मुझे बचा ले यहाँ पर। निकिता की धमकी आ चुकी है कि हाँ मुझसे तो पड़ेगी ही अगर ये गाना और चला तो। भाई साहब ऐसा है, ये गहरा, इतना गहरा हो चुका है हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स में कि निकालने में भी थोड़ा सा समय तो लगेगा, बट आई प्रॉमिस यू निकिता, धीरे धीरे ये सच में फिसल रहा है, सच में।

हाँ हाँ यही प्यार है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज तो मन कर रहा है तुम्हें जल्दी से आके हग कर ले, बिकॉज यू रियली ब्रॉट स्माइल्स दिस इवनिंग। लव यू लव यू लव यू पीपल। बस मुझे भी थोड़ा सा खुश करके घर भेजो ताकि मुझे रात को अच्छी नींद आ जाए कि मैंने कुछ लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट लाई हूँ मैं। उफ, रेडियो मस्ती 24/7 रह गए गाने चार और धमकियां मुझे यहाँ पर मिल रही हैं एक के बाद एक। आई एम एंजॉयिंग इट बाय द वे।

भाई मैंने भिड़ा देना आप लोगों को डायरेक्टली। आदित्य और निकिता तुम दोनों आ जाओ मैदान में, ठीक है, और खुद ही अखाड़े में आके लड़ लो। एक कहता है कि चलाया तो जला के राख कर दूंगी, और एक कहता है कि आग लगा दो प्लेलिस्ट को अगर ये गाना नंबर 4 पे है। मैं कहाँ जाऊँ बेचारा,

0: भाई गहरा तो हुआ ये राज कि क्यों ये गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार ये इसको यहीं रहना चाहिए, इसको कहीं नहीं जाना चाहिए. At the risk of course, my life right now, I'm saying this. लेकिन यार seriously एक बात बताऊं, आप लोगों के साथ में ये वाला शो करने के बाद ना मुझे इतनी मस्तियाँ आती हैं, इतनी मस्तियाँ आती हैं क्योंकि आपके मैसेजेस मैं पढ़ती रहती हूँ बात तक. सारे तो इस टाइम तक पढ़े नहीं जाते हैं, बट आई जस्ट कीप रीडिंग दैम लेटर एज वेल. सो फिर ऐसा लगता है यार जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती. मिलना हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तफाक नहीं होती. तो जो जो नाराज है वो भी मान जाओ यार, अब रह गए हैं गाने हमारे सिर्फ और सिर्फ तीन, और उन तीन गानों में से आप जानते हैं कि एक गाना है गाना नंबर तीन जो मैं चलाने वाली हूँ. आप
1: दैया कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
0: ओए होए चटनी, जी हाँ बिल्कुल चटनी बनाएंगे साथ साथ में इस टाइम पर. गाना नंबर तीन, फिर रह गए दो गाने. कॉकटेल टू वर्सेस कॉकटेल टू. बताओ बताओ बताओ कौन सा होने वाला गाना नंबर एक. वेल दिस इज रेणुका विद यू स्टेइंग टिल 8 PM. कोई डर नहीं है मुझे, क्या कर लोगे तुम मेरा, तुम तो हो ही नहीं ना स्टूडियो में. कोई भी गाना चलाओ नंबर एक पर.
2: It is on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song number 3.

0: बनी सीरियसली द लिरिक्स आर धीरज बबुआन एंड आई फील क्या लिरिक्स ये लिखते टाइम लोग क्या सोचते हैं यार बट नील कमल सिंह एंड ममता शर्मा ऑसम मजा ही आ गया रह गए दो गानों से पहले सस्पेंस जितना मजा आता ना मुझे इस टाइम पर उफ पूछो मत इट्स कॉल्ड दैट यू नो बड़ा ही मजा आता है सीरियसली
1: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर

0: इतना गंदा क्यों मैं ये कर रही हूँ काम यहाँ पर, वेरी बैड। रेडियो मसी 24/7 पर, जी हाँ बिल्कुल, अर्ज किया है जाने से पहले, ना प्यार करो झूठा, ना प्यार करो झूठा, ना इश्क करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगी, मेरी शायरी मेरी मर्जी, हा हा। Radio Masti 24/7 par. Ji haan bilkul, it's time for me to say goodbye guys. I have absolutely enjoyed playing the 18 top ganas to you today. And of course, with that, the loads of other very romantic songs this evening. But I tell you, the most important thing is the messages you write to me and the fun that we have offline. Usme khub masti aati hai, really. And I hope that will continue over the next many, many days that we are still together, years, months, jitna bhi keh lijiye. Lekin haan, totally in love with you guys today. And you know what, yahan par mujhe likha ja raha hai, ki are, gana number ek chutney hai kya? Maine kaha chutney to number 3 pe ban gayi. बन चुकी चटनी, अभी गाना बन रहा है, ठीक है? तो गाना नंबर एक कौन सा है ये आप सुनते जाइए। फिलहाल के लिए रेणुका यहाँ से जा रही है, बिकॉज इट इज टाइम फॉर मी टू से गुडबाय। जी हाँ, कल सुबह मिलूंगी मैं आपको, बिल्कुल, यू नो आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द स्केड्यूल, जहाँ पर 8 o'clock आई लीव एंड देन आई एम काइंड ऑफ कमिंग बैक एट 7 इन द मॉर्निंग, लेकिन आई एम एंजॉइंग इट, बिकॉज उसके बाद मुझे लगता है वीकेंड मेरा भी शुरू हो जाता है राइट आफ्टर दैट एट 11 इन द मॉर्निंग। सो वेल, बाय बाय रेन, लव यू। मैं और अंतरा गाएंगे ऐसे गंदे गंदे गाने, गाओ तुम लोग, गाओ अच्छे से, ठीक है? और मैं यहां से निकलती हूं। हैव अ गुड इवनिंग गाइज, एंड रिमेंबर, क्या, रिमेंबर टू स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स। पहली क्या है, कल बताऊंगी सुबह, ठीक है? बाय फॉर नाउ।
1: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर।
2: चेक इट आउट।
1: Trending song number 2.

स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: you got to.
1: एक पुरानी हिंदी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितनी छोटी सी लाइन है ना, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा रुक कर सोचा जाए तो शायद पूरी जिंदगी समझ में आ जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, करियर में, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई हम रोज अपने ही मन के साथ लड़ते हैं। क्या मैं इनफ हूँ? क्या मैंने सही डिसीजन लिया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? और पता नहीं क्या क्या। कभी कभी इन सवालों का जवाब हमें किसी एक्सपर्ट के पास नहीं मिलता, बस किसी ऐसे इंसान के पास मिलता है जो बिना बीच में टोके हमें सुन ले। और शायद इसीलिए हमने डियर मस्ती दिल से इसकी शुरुआत की। ये है वही आपका वो सेफ स्पेस। हेलो, हाय, नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम टू डियर मस्ती दिल से, जहां आप अपने दिल की कोई भी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल्स नहीं, और सबसे जरूरी बात, कंप्लीट एनोनिमिटी। यहां नामों से ज्यादा इमोशंस को हम अहमियत देते हैं। आपके लिए हम डियर मस्ती, और हमारे लिए आप, दैट्स राइट, डियर लिसनर। बस इतना ही सा रिश्ता है हमारा। अगर आपके दिल में भी कोई बात है जो आप किसी से शायद नहीं कह पा रहे हो, तो हमें इतना ही सा रिश्ता है हमारा। अगर आपके दिल में भी कोई बात है जो आप किसी से शायद नहीं कह पा रहे हो, तो हमें आप लिखकर भेज सकते हैं 9151893 पर, या फिर कोई भी एक आईडी ईमेल की क्रिएट करके आप वहां से भेज दें, listener@radiomasti.com.sg पर। हर लेटर को हम पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं और हर इमोशन को पूरी इज्जत के साथ सुनते हैं। तो चलिए एक और शाम दिल की बातों के नाम, यह डियर मस्ती दिल से। बस अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ विद आवर वेरी फर्स्ट लेटर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ इस वक्त अंतरा आपके साथ, और चलिए आज की सबसे पहली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चिट्ठी आज की कुछ कहती है, डियर मस्ती, There's this guy and I think we both kind of like each other, but we have not started dating because honestly I am not ready. I want to meet people, experience life and take my own time. The problem is he already behaves as if we are in a relationship already. In front of everyone, he is very possessive and acts like I already belong to him. How do I make him understand without hurting him? Okay. सो डियर लिसनर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स खुद को पाते हैं, और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कई बार कंफ्यूजन किसी की बुरी नीयत की वजह से नहीं होता, कंफ्यूजन होता है क्योंकि दो लोग एक ही स्टोरी को अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं। आपके लिए शायद ये फेज है, लेट्स सी वेयर दिस गोस, और शायद उसके लिए वी आर ऑलरेडी टुगेदर। बस आई थिंक यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट स्पोकन पीपल क्रिएट देयर ओन स्टोरीज, और इंसान का दिमाग ना ब्लैंक्स जो है बहुत जल्दी फिल कर देता है। अगर वर्ड्स क्लियर ना हो तो एक्शंस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है। एक कॉफी डेट, एक लॉन्ग फोन कॉल, रोज गुड मॉर्निंग मैसेज या एक दो कॉम्प्लीमेंट्स, एक इंसान के लिए बस फ्रेंडशिप या गेटिंग टू नो ईच अदर हो सकता है, और दूसरे के लिए वो कमिटमेंट जैसा फील होने लगता है। और जब वर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते हैं तब शुरू होता है कंफ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट एंड कभी कभी अननेसेसरी हार्ट ब्रेक। इसलिए मुझे लगता है फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ दूसरे इंसान को प्रोटेक्ट नहीं करती, आपको भी प्रोटेक्ट करती है। तो इस लेटर में मुझे सबसे बड़ा इशू पोसेसिवनेस से भी पहले कम्युनिकेशन का लगा। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर एंड फिर बात करते हैं कि मैं इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचती हूँ, और अगर मैं शायद होती इस सिचुएशन में तो क्या करती। पर उससे पहले ये गाना,
1: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला,
0: ये तो बात उतनी ही सच है, कोई ना कोई तो चाहिए होता है प्यार करने वाला या नहीं चाहिए होता है। We will know in just a short while on Radio Masti 24/7 Live। आप सुनते रहे Dear Masti, दिल से।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो वेलकम टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेल यहाँ पर जो है एक चिट्ठी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्विक रिकैप देते हुए हमारे एक डियर लिसनर ने हमें लिखा है कि उन्हें और एक लड़के को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है लेकिन उन्होंने अभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लेकिन वो लड़का पहले ही उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगा है और सबके सामने वो काफी पजेसिव बिहेव करता है। और उनका सवाल ये था कि मैं उसे ये बिना हर्ट किए कैसे समझाऊं। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो एक बात, आपका रिलेशनशिप नहीं चाहना या अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी ना होना किसी को रिजेक्ट करना नहीं होता और किसी को पसंद करना कमिटमेंट दे देना भी नहीं होता। हम अक्सर इन दोनों चीजों को एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन सिर्फ प्यार नहीं होती है, क्लैरिटी भी होती है। और आपने जो है अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स क्रिएट मिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस। सो हो सकता है आपने कभी इंटेंशन से कुछ गलत ना किया हो, लेकिन अगर आप दोनों ने कभी बैठकर ये डिस्कस ही नहीं किया कि हम एग्जैक्टली किस स्टेज पर है, तो नेचुरली जो है कोई अपनी तरफ से वो स्टोरी अपने दिमाग में बना लिया होगा और आपने अपनी तरफ की स्टोरी अपने लिए क्लियर रखी होगी और फिर दोनों को लगेगा कि भाई सामने वाला बदल गया। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, मुझे लगता है आपको उससे एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन का पर्पस उसे रिजेक्ट करना नहीं, उसे क्लैरिटी देना होना चाहिए कि यू नो आई जेन्युइनली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू बट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट। मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और ना ही मैं उस कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। अगर फ्यूचर में कुछ बदलेगा तो मैं तुमसे ऑनेस्टली शेयर करूंगी, लेकिन अभी के लिए मे बी प्लीज मुझे मेरी स्पेस जो है, आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट इट एंड आई विल रिस्पेक्ट योर्स एज वेल। कभी कभी हम लोग ना समझ नहीं पाते हम कैसे क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो जैसे इसमें कोई ब्लेम नहीं है बट एक ऑनेस्टी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी बाउंड्री को क्लियरली बोल देते हैं और उसके बाद भी सामने वाला उस बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं करता, तब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं रहती है, तब प्रॉब्लम आई थिंक रेस्पेक्ट की हो जाती है। और रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी कनेक्शन, रेस्पेक्ट के बिना कुछ भी हेल्दी नहीं तैयार हो सकता। सो डियर लिसनर, ये बात मेरी तरफ से आप रख लीजिए कि आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अपनी इंटेंशंस क्लियरली कम्युनिकेट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। बाकी सामने वाला उसे कैसे रिसीव करता है वो उसका पार्ट है। सो आई थिंक जस्ट ब्रेव अप, हिम्मत कीजिए, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए। हो सकता है कि देखिए थोड़ा सा तो हर्ट हो, लेकिन टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन से हमेशा बेटर होता है। और क्या पता यही ऑनेस्टी कल को एक और भी हेल्थी रिलेशनशिप का फाउंडेशन बन जाए। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, कुछ ना कुछ कम जरूर पड़ जाएगा। सो जो है उसको क्लैरिटी के साथ जिए, दैट्स व्हाट वी शुड एम फॉर। ये है दियर मस्ती दिल से, होप दिस हेल्प्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये आवाज है आपकी अंतरा की जो आपके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। पता है कभी कभी थकान का रीजन काम नहीं होता है, एक ही तरह की जिंदगी होती है, राइट? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, या जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली निभाना, फिर घर, और फिर यही साइकिल चलता रहता है। और बस फिर एक वो मोमेंट आता है जब आप अपने आप से पूछते हो कि बस इतना ही। अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है तो शायद ये अगली चिट्ठी जो है आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। सो यस, बढ़ते हैं अगले लेटर की ओर। इट सेज, डियर मस्ती, पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो, मैं वो सब करता रहा, पता ही नहीं चला कब सालों निकल गए। कल अचानक बैठा तो रियलाइज हुआ कि काम के अलावा मैंने जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं। दिल करता है एक महीने का ब्रेक लूं और बस ट्रैवल करूं, दुनिया देखूं, लेकिन डर लगता है कहीं काम ही हाथ से ना निकल जाए। Am I weird? Am I unique? Okay, my dear listener, सबसे पहले आप weird बिल्कुल भी नहीं हो और ना आप अकेले हो इस बात में। इसको कहते हैं wake up moment, you know? वो पल जब इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि ये पूछता है कि मैं ये किस लिए कर रहा हूं। एंड बिलीव मी, ये सवाल बहुत हेल्दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब से भागना चाहते हैं, इसका मतलब शायद सिर्फ इतना है कि आप अपनी आइडेंटिटी सिर्फ अपनी जॉब तक सीमित नहीं रखना चाहते, राइट? अब यू नो, जरा पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उन्होंने जो सिखाया, पढ़ो लिखो काम करो, ऑफ कोर्स एवरी ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर राइट, राइट? वो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके फ्यूचर को स्टेबलाइज करना चाहते थे, तो वो बहुत जरूरी भी था, राइट? लेकिन एक सिक्योर लाइफ और एक फुलफिलिंग लाइफ दोनों एक ही चीज नहीं होते। हमें रोजी रोटी भी चाहिए और रूह को खुशी भी चाहिए। अब बात आती है एक महीने का ब्रेक, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कल ही यू नो लेटर डाल दीजिए, रिजाइन कर दीजिए और बैकपैक लेकर निकल जाइए। आई थिंक वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो डर है ना, ये भी उतना ही रियल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी रियल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने इस थॉट को इग्नोर नहीं कीजिए। कभी कभी हम ब्रेक इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम थक गए हैं, हम ब्रेक इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम दोबारा जीना याद करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से शुरू करिए, देखिए कि आपकी अनपेड कितनी आप लीव्स ले सकते हैं या एक्यूमुलेटेड लीव यूज कितना कर सकते हैं। अगर एक महीना पॉसिबल नहीं है तो डोंट गो फॉर लाइक अ वेरी बिग नंबर, एक हफ्ता, 10 दिन, यू नो, 2 वीक्स, लेट अस मेक दैट अ पॉइंट, राइट? पॉइंट ट्रैवल का ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ में काम के अलावा भी जगह बना रहे हैं। और एक बात ये हमेशा याद रखना कि काम आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन काम आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। ये बात मैं खुद को भी समझाती रहती हूँ। That is why I'm saying, जिस दिन ये बैलेंस हम लोगों ने क्रैक कर लिया ना, उस दिन शायद मंडे भी हल्का लगेगा और संडे और भी खूबसूरत लगेगा। तो माय डियर लिसनर, अपने इस एहसास से मत डरिए। कभी कभी दिल जो सवाल पूछता है ना, वही हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत जवाब तक लेकर जाता है। अब ये दुनिया का नारा, आपको अपना नारा बनाना है कि क्या करना है, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। बट थैंक यू फॉर राइटिंग टू डियर मस्ती दिल से। होप दिस हेल्प्स।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम, एनीवेयर।

0: They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
2: मैं आरजे इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

और अब मेरी बारी। अ वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही शो पर हैं आप। बस आवाजें बदलती रहेंगी, यही तो खासियत है इस शो की, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होती हैं। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से। हमारे हर शो में हमेशा एक सवाल होता है और फिर उसका जवाब, लेकिन अभी इस समय नो सवाल, सिर्फ एक छोटा सा रिफ्लेक्शन। अगर सिर्फ अगर कल सुबह आप उठो और फिर पैसा इज नो इशू, मतलब देर इज नो ईएमआई, देर इज नो बिल्स, देर इज नो ऑफिस, कोई फाइनेंशियल वरीज नहीं है, तो कल सुबह आप क्या करोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे आई ट्रैवल द वर्ल्ड, कुछ कहेंगे आई फाइनली रिटायर, और कुछ कहेंगे मैं तो सीधा मालदीव्स। लेकिन आपको सच बताऊं, मैं सोचती हूँ पहले 3 दिन तो हम सब बहुत एंजॉय करेंगे, है ना, क्योंकि चिंता ही नहीं है पैसे कमाने की, काम करने की, कुछ करने की। लेकिन फिर उसके बाद हम वही करना शुरू कर देंगे जो हम सच में करना चाहते हैं, समझे ना आप। कोई म्यूजिक सीखेगा, कोई कुकिंग करेगा, कोई बुक्स लिखेगा, कोई अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करेगा, और कोई बिना घड़ी देखे चाय पिएगा। ओहो, कितना मजा है। और फिर मुझे एक और सवाल आया दिमाग में, भाई देखो डियर मस्ती दिल से है तो सवाल कहीं ना कहीं तो आएगा। अगर वो सब चीजें ही हमें असली खुशी देती हैं, तो हम उनमें से कितनी चीजें आज से ही शुरू कर सकते हैं। शायद वर्ल्ड टूर नहीं, लेकिन इवनिंग वॉक पर तो जा ही सकते हैं। मालदीव्स ना सही, पर संडे को फैमिली लंच तो कर ही सकते हैं। जॉब क्विट नहीं कर सकते, पर अपनी हॉबी तो वापस से शुरू कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? कभी कभी ना लाइफ में हमें पैसे की नहीं, लेकिन एक परमिशन की जरूरत होती है, खुद को परमिशन देने की, थोड़ा धीरे जीने की, थोड़ा ज्यादा हंसने की, और थोड़ा काम पोस्टपोन करने की। तो आज के रिफ्लेक्शन बस इतना ही। इफ मनी वॉजेंट एन इश्यू, व्हाट वुड यू डू टुमारो? मुझे लिख के बताइए 9151896 पर। फिलहाल के लिए तो मैं ये बढ़िया सा गाना चलाती हूँ जो शायद एक और टू डू आइटम्स में होगा। अपनों का प्यार, उसके बिना क्या है जिंदगी, राइट? सुनते साथ साथ इस डियर मस्ती दिल से, एंड ऑफ कोर्स सही है पहचाना आपने, इट्स रेणुका।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं होता, पर हाँ ख्यालों में जरूर होता है। बिल्कुल इन्हीं बातों के साथ साथ मैं आरजे अनुभूति और मस्ती दिल से शो पर आपसे बातचीत कर रही है। वैसे आपके ख्यालों में भी जो ख्याल आए ना, वो आप हमें लिखकर भेज दिया करिए। डियर मस्ती दिल से शो पर हम आपके लेटर्स पढ़ते हैं, आपके ख्यालों में छिपे सवालों के जवाब ढूंढते हैं एंड डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। सो अभी जो मेरे हाथों में लेटर आ चुका है उसमें लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड आउटस्पोकन इंसान हूँ और बस एक कमी है मुझ में, मैं किसी से भी अगर पहली बार मिलता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहली मीटिंग में बात क्या करी जाती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट मीटिंग में मैंने शायद इतना कुछ गलत पूछ लिया कि आज भी मैं अकेला ही हूँ। सो कुछ एडवाइस दो, फर्स्ट मीटिंग में क्या बिहेवियर रहे, कैसे रहे। ओके, सबसे पहली चीज मैं आपको पूछूंगी कि फर्स्ट मीटिंग में आपको कुछ बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं दिखना है, आप जैसे हो वैसे दिखना है, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे सवालों की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मीटिंग में आप किसी से भी उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स के बारे में मत पूछिए, आप उस शख्स के बारे में पूछिए कि वो सिंगापुर में कब से रहता है या रहती है, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, करियर के क्या प्लान्स हैं, लाइफ के क्या गोल्स हैं। आपको लाइफ डिस्कस करनी है, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी है, बिकॉज समटाइम्स हम बहुत ही ऑफेंड फील करते हैं कि कोई हमसे अभी अभी मिला और हमसे कितने पर्सनल सवाल पूछ रहा है। हाँ, सो मे बी आप कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते होंगे जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता होगा, तो वो सवाल भी पूछे जाएंगे लेकिन एक सही वक्त पर, है ना, जब आप भरोसा जीत लेंगे।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

अच्छा, मूवीज देखकर आपने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, तो क्यों ना एक सही तरीके से उससे गाइडलाइंस ली जाए कि आप किसी को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ, एंड यहाँ पर बड़े सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनको देखकर लगता है कि अरे ये भी कोई दिक्कत है, अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है यार। सो अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है, उन्होंने लिखा है कि मैं जैसे ही किसी से बात करना शुरू करती हूँ तो मुझे एंजाइटी फील होने लगती है। मैं जितनी जल्दी कोशिश करती हूँ उस जगह से उठ जाने की, उतनी जल्दी वहां से निकल जाती हूँ। वो ऑफिस की मीटिंग्स हो गई, घर वालों के डिस्कशंस हो गए, कजिन्स का घर पर आना हो गया, या फिर किसी से भी डेट पर मिलने जाना हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे हार्डली 10 मिनट्स उसको देने और मैं यहाँ से जाऊँ। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है, आप अपने आप को इतना रिजर्व क्यों रख रहे हो? हाँ देखो, कई बार होता है कि हमें अकेले रहना, अकेले उठना, अकेले खुद से शीशे में बैठ के बातें करना अच्छा लगता है, फिर उससे होता क्या है, हम बहुत ही ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ तो सबसे पहले ये जो आपने एक वॉल क्रिएट कर रखी है ट्रांसपेरेंसी अपने आसपास, उसको तोड़िए और सबसे पहले अपने घर वालों के संग बैठिए, डिस्कशंस कीजिए और जिस मोमेंट आपको एंजाइटी फील होना, उस मोमेंट से आप 15-20 मिनट ऊपर बैठिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फील गुड।

0: ऐसे ही गुड फीलिंग देने वाले गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नूपुर के साथ.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: And it's time for मेरा अगला लेटर. जी हाँ, यहाँ पर मुझे लिखा गया है एक 42 ईयर ओल्ड ने, और उन्होंने कहा है कि भाई ऑन पेपर आई थिंक आई एम सक्सेसफुल, लेकिन आगे क्या परेशानी है, लेट मी टेल यू. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. तो चलिए इनकी बाकी की चिट्ठी देखते हैं. हाय रिनुका, आई टर्न 42 दिस ईयर. ऑन पेपर आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. हैव अ गुड जॉब, अ डिसेंट इनकम, अ हाउस, अ कार, एंड पीपल ऑफन टेल मी यू हैव डन वेरी वेल. लेकिन हाल ही में मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया है, व्हाट इज सक्सेस? बिकॉज इफ दिस इज सक्सेस, देन व्हाई डू आई स्टिल फील रेस्टलेस? I hardly spend time with my parents. I don't remember the last time I sat with my family without checking my phone. I keep chasing the next promotion, the next target, the next achievement. और हर बार जब मैं वहां पहुंच जाऊं, तब happiness lasts only a few days. Then another race begins. Sometimes I look at people earning much less than me and laughing more than me. Sometimes I see retired people walking in the park, smiling without any hurry. And I wonder, have I confused success with being busy? क्या सक्सेस पैसा है, क्या सक्सेस पीस है, या क्या सक्सेस फैमिली है? और इज इट सिंपली वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ? आई ऑनेस्टली डोंट नो एनी मोर. तुमको क्या लगता है? पर पहली बात तो आपने ये नहीं बताया कि आपका जेंडर क्या है. तो मुझे ये नहीं पता कि इस समय मैं किसी आदमी से बात कर रही हूँ या औरत से बात कर रही हूँ, बट इररेलेवेंट. जी हाँ, टोटली सक्सेस का मीनिंग तो सेम होना चाहिए ना. तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, थोड़ा जिंदा होते हैं और उसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब भी शायद दे पाएंगे. Let's get Zinda, भाग मिलकर भाग के साउंड ट्रैक से ये वाला गाना, and I'll be back very soon. Stay tuned.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

वेलकम बैक. जी हाँ, कुछ देर पहले ब्रेक से पहले एक सवाल आया था यहाँ पर कि सक्सेस क्या है. इज इट पीस, इज इट मनी, इज इट फैमिली, आखिर क्या है? तो चलिए उस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डायरेक्शन ढूंढते हैं. इस सवाल का जवाब तो मुझे भी बहुत दिनों से तलाश है. डियर मस्ती दिल से. Alright, dear Masi, दिल से. पर इस सवाल का जवाब, well, सबसे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान listening today जिसने ये सवाल कभी ना कभी अपने आप से नहीं पूछा होगा. What is success? जब हम छोटे होते हैं तो सक्सेस लगता है जैसे कि मार्क्स अच्छे आ जाएं, देन अच्छे कॉलेज में घुसना, देन अ जॉब, देन अ प्रमोशन, देन अ बिगर हाउस, अ बेटर कार, सेविंग्स थोड़ी ज्यादा. बट कहीं ना कहीं अलोंग द वे लाइफ क्वाइटली आस्क्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी? क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, एक डेस्टिनेशन नहीं है. मे बी इट चेंजेस विद एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. जब हम 20 साल के होते हैं, सक्सेस इज एन अपॉर्चुनिटी. एट 40 सक्सेस मे बिकम बैलेंस. एट 60 सक्सेस मे सिंपली बी गुड हेल्थ, पीसफुल स्लीप एंड पीपल हु जेन्युइनली लव यू. मनी इज इम्पॉर्टेंट, अचीवमेंट भी बहुत जरूरी है, एम्बिशन भी जरूरी है, बट अगर सब कुछ है और पीस नहीं है, देन परहैप्स यू आर सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन नॉट येट इन द आईज ऑफ योर ओन हार्ट. कभी कभी रियल सक्सेस इज प्रोबेबली दिस, टू हैव समवन वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गो होम, टू हैव टाइम फॉर द पीपल हु मैटर, अच्छे से नींद पूरी होना पीसफुली, टू वेक अप विद पर्पस, टू बी रिस्पेक्टेड not because of your position but because of the person you are. aur ek thought jo mere dimag mein hamesha aata hai, mujhe lagta hai aapke sath bhi share karti hu, ek din aisa aayega jab aapko koi yaad nahi karega for how many meetings you attended or how many emails you sent. They will remember how you made them feel. Maybe wahi hai success. Think about it. Radio Masti 24/7 par chhota sa break. सक्सेसफुल ब्रेक लेकर आएंगे, अच्छा गाना चलाएंगे. गुड इवनिंग.

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

कई बार ऐसा होता है कि दुनिया को सवाल पूछने के बजाय हम खुद से सवाल पूछ बैठते हैं। आपने कभी ये गलती करी है? हाँ, डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर, एंड दूसरों पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान होता है खुद पर उंगली उठाना। और आपको तो पता ही है, हम सबसे ज्यादा आसान काम पहले करते हैं। हाँ, सो अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें किसी ने मुझे लिखकर भेजा है कि हाय डियर मस्ती, मुझे ना अपना नाम नहीं पसंद है, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है जब कोई मुझे मेरे ही नाम से बुलाता है। मतलब आई फील वेरी पिटी जब कोई मेरे नाम का और ज्यादा मजाक उड़ाता है, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मेरे नाम की वजह से मेरा हर जगह मजाक बन जाता है। मैं क्या करूं बताओ, अब नाम ऐसी चीज है कि मैं बदल भी नहीं सकता। डेफिनेटली जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है, मुझे आपका नाम जानना भी नहीं है, बिकॉज ये शो जो है वो बहुत ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करता है, राइट? एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ये कहावत तो सुनी है ना कि नाम में क्या रखा है, आपके काम में रखा है यार। हा? आप काम ऐसे कीजिए कि आपका नाम इतना बड़ा बन जाए कि आपके नाम के पीछे का जो फंक्शनिंग है उस पे ध्यान ही ना जाए किसी का। हाँ, देखो, सबसे पहली चीज, अगर दुनिया आपके नाम का मजाक उड़ा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उससे भी बड़ी गलती आप खुद कर रहे हैं। आप अपने नाम को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, व्हाटएवर योर एज, एंड डेफिनेटली आप मुझे लेटर भेज रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर अच्छी एज तक पहुंच गए होंगे, और आपने बचपन से लेके, मतलब आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ और अभी जो भी लाइफ आपकी चल रही है, आपने सबसे पहले खुद का नाम एक्सेप्ट नहीं किया है। आप उसको एक बहुत ही छोटी नजरों से देखते हैं, जिसकी वजह से दुनिया आपके नाम का मजाक बना पा रही है। ये बहुत छोटी चीज है यार, आप अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो, अपने बिजनेस प्लान्स और गोल्स पे ध्यान दो, नाम बन जाएगा। वो सिर्फ चार शब्दों का एक

इट्स मी माई सेल्फ और डेफिनेटली माइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो दुनिया आई के अराउंड घूमती है ना, ये बहुत ही गलत है यार, बहुत ही गलत है. डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजी नुपड़ाव के साथ एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे लेटर्स मेरे पास पहुंच रहे हैं. और अगला लेटर पता है क्या है, उसमें किसी ने मुझसे पूछा है कि हाय डियर मस्ती, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि एक रिलेशनशिप में पार्टनर और मेरा वक्त तो है ही, लेकिन मुझे अपना क्वालिटी टाइम अलग से कितना निकालना चाहिए, सिर्फ मी टाइम कितना होना चाहिए, एक उसका क्या कैलकुलेशन होता है, बिकॉज समटाइम्स आई मिस माई सेल्फ. जिन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप सच में एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं? देखो, हेल्दी रिलेशनशिप में सारी चीजें ना बहुत ही, मैं बता रही हूँ, एफर्टलेस होती है. मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अकेले वक्त बिताने से ज्यादा अच्छा ना अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगेगा. और मी टाइम जैसा जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो आपके जहन में भी नहीं आएगा. और अगर आपका पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ तो वो सामने से ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेगा कि आप दोनों अपने अपना मी टाइम भी एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी एक सिंगल लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं और एट द मोमेंट अपनी ड्यूअल लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं. तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपके पास एक रिलेशनशिप में रहते हुए अकेले का कितना वक्त होना चाहिए. बट हाँ, अगर आप एक सच में हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, आपको ये वक्त खुद ब खुद मिल जाएगा.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा आपके साथ। और पता है कभी कभी हमें ये सच्ची में नहीं समझ में आता कि हाउ मच इज इनफ, कब प्रोटेक्ट करना है, कब ट्रस्ट करना है, कब बोलना है, कब सिर्फ सुनना है। थोड़ी देर पहले नुपुर के पास जो लेटर आया था उसने मुझे भी आई वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग कि अगर मैं सिचुएशन में होती तो हाउ वुड आई हैव काइंड ऑफ डेल्ट विद इट। बट वेल, चलते हैं हमारे अगले लेटर की ओर। डियर मस्ती, लोग अपने टीनेजर्स से प्रोटेक्शन यूज करने और इस टॉपिक पर कैसे बात करते हैं। मेरे वाले तो बात शुरू होते ही भाग जाते हैं। बट आई जेन्युइनली फील कि एज पेरेंट्स दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनी आइडिया? नहीं? ओके। हमारे टाइम में तो कोई टीवी पे कुछ भी ऐसा आता था ना, रोमांटिक सीन भी आता था, तो हमारे चैनल बदल दिए जाते थे या फिर हमें रूम से बाहर कुछ पानी लेके आओ मेरे लिए ऐसे करके भेज दिया जाता था। बट माय डियर लिसनर, ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज्ड। जस्ट मेरे को अचानक से वो याद आ गया। वेल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। But I am very sure that you would have tried your best. शायद आपने उनको साइड में एक दिन मतलब काफी जो है करेज इकट्ठा करके कहा होगा, आओ तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात करनी है ना, आपने उनको बिठा कर ठीक है ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट की होगी। लेकिन एक बात ऑनेस्टली बताइए, जितना ऑकवर्ड वो मोमेंट आपके लिए है उतना ही ऑकवर्ड आपके टीनेजर के लिए भी है। एंड इस एज में ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? बस उठो और भाग जाओ। देखिए, एक एक लाइन जो आपने कई बार सुनी भी होगी, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। एंड टीनेजर्स वो तो जिंदगी के उस फेज में होते हैं जहां पे सब कुछ बदल रहा होता है उनके लिए, राइट? उनकी बॉडी, उनके हॉर्मोन्स, उनके इमोशंस, उनकी आइडेंटिटी, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्यूरियोसिटी पीक पे होती है, सब कुछ एक एक साथ इवॉल्व हो रहा होता है। एंड बिलीव मी, चाहे हम पेरेंट्स बन गए हो, हम सब कभी ना कभी इस फेज से गुजरे हैं, राइट? बस शायद भूल गए हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर क्या करें। मुझे लगता है इसको एक स्पेशल मीटिंग मत बनाइए, नॉर्मल थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप फैमिली के साथ कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे ही जनरली बात हो रही है, हा ही हो रहा है, कोई ऐसा टॉपिक निकल आया, या टीवी देखते वक्त कोई किसिंग सीन आ गया, या किसी मूवी में रिलेशनशिप की बात हो रही हो, उस मोमेंट को ऑकवर्ड बनाकर चैनल मत चेंज करिए, ना ही सबकी नजर अपने टीनेजर पर टिका दीजिए, स्पॉटलाइट पर डाल दिया उसको। बट कैजुअली कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने स्पाउस से ही जनरली बात कर रहे हैं बच्चों के सामने, ठीक है, मुझे लगता है आजकल स्कूल में कंसेंट एंड प्रोटेक्शन, आई एम श्योर इन बच्चों को तो हमसे ज्यादा ही पता होगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में घर पे इस तरह से बातें करना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, टीनेजर्स दिखाएंगे कि उनका ध्यान फोन में है लेकिन वो सुन सब रहे होते हैं, हर वर्ड, हर रिएक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें ये फील होता है कि ये टॉपिक तो घर में टैबू के जैसा नहीं है, और जिस दिन उनके मन में कोई जनरल सवाल आएगा उस दिन उनके लिए आपके पास आना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ आंसर्स देने का नाम नहीं है, पेरेंटिंग वो एनवायरनमेंट भी बनाने का नाम है जहां पे बच्चा बिना डरे सवाल पूछ सके, और शायद वही सबसे बड़ी आई थिंक विन विन सिचुएशन होती है। आई होप दिस हेल्प्स। आप उनको जरूर इस तरह से जो है कैजुअल कॉन्वर्सेशंस के बीच में जो है समझाने की कोशिश करें, आई एम श्योर दे विल ओपन अप टू यू फॉर श्योर। बट ये भी तैयार रहिए कि व्हेन दे ओपन अप यू विल बस हमारी तरह विदाउट जजमेंट उनको पूरे दिल से सुने, प्रॉपरली सुने, है ना। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

टाइम फॉर मी एंड माई नेक्स्ट लेटर. जी हाँ, ये है डियर मस्ती दिल से और आप सुन रहे हैं आपकी चिट्ठियाँ अनोनिमस एब्सोल्युटली एंड शायद बहुत से लोगों के दिलों को छूती हुई. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से एंड रेडियो मस्ती 24/7. ये वाली चिट्ठी कुछ ऐसे कहती है कि डियर रेणुका, आई नेवर थॉट कि मुझे एक मोबाइल फोन के बारे में तुम्हारे को लिखना होगा. बट आई थिंक इट्स स्लोली टेकिंग ओवर माई लाइफ. द फर्स्ट थिंग आई डू एवरी मॉर्निंग इज चेक माई फोन. द लास्ट थिंग आई डू बिफोर स्लीपिंग इज स्क्रोल. समटाइम्स आई पिक इट अप जस्ट टू चेक द टाइम एंड 20 मिनट्स डिसअपियर. जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ आई एम ऑन माई फोन. व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स मैं नोटिफिकेशंस चेक करती हूँ. व्हाइल आई एम वॉचिंग अ मूवी आई एम लुकिंग एट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज आई एम ऑलवेज कनेक्टेड बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर फेल्ट सो डिसकनेक्टेड. I can't remember the last time I sat quietly without reaching for my phone. I've tried deleting apps, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेती हूँ. क्या मैं एडिक्टेड हूँ? And if I am, how do I get my life back? Oh my God, मुझे कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है. Not joking, not kidding, really. But ये जो फोन है ना, शुरू शुरू में जब ये लॉन्च हुए थे स्मार्टफोन्स, मैंने बहुत टाइम तक इसको ना लेने की कोशिश करी थी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली बिकॉज मुझे पता था कि एक तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा और दूसरी चीज़ ये जो बीमारी शुरू हो रही है ये मुझे बहुत दूर तक हड़प लेगी. और मुझे ही नहीं, मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग धीरे धीरे इसके अंदर घुसते चले गए. यस, आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम इट. लेकिन फिर भी काम है या कई बार रिलैक्सेशन है, दोनों ही रीजंस के लिए हाथ इसी डिवाइस की तरफ जाता है. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर और वापस आके बात करते हैं कि भाई आप और हम सारे इस एडिक्शन से कैसे कंट्रोल करें. गुड इवनिंग.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। राइट, डिजिटल एडिक्शन, फोन के साथ में हमारा कुछ ज्यादा ही लगाव। जी हाँ, उसके बारे में बात कर रहे थे हम जस्ट बिफोर दिस ब्रेक, जब ये लेटर मैंने आपके लिए पढ़ा था। बट वेल, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ लुक एट सॉल्यूशन क्या है। डियर मस्ती दिल से, ये जो डिजिटल एडिक्शन है ना, ये वार्निंग के साथ नहीं आता है, इट जस्ट क्वाइटली बिकम्स अ हैबिट। हमारा फोन्स जो हमारा टाइम सेव करने का डिवाइस था, लेकिन आज के दिन में उसने हमारा सारा टाइम ले लिया है। वी आर स्क्रोलिंग थ्रू अदर पीपल्स लाइव्स एंड हम अपनी जिंदगी के मोमेंट्स तो मिस कर रहे हैं। आपने नोट किया है, वी पैनिक मोर व्हेन वी फॉरगेट आवर फोन देन व्हेन वी फॉरगेट टू आस्क हमारे पेरेंट्स हाउ दे आर डूइंग। वी नो व्हाट्स ट्रेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द रूम वी आर सिटिंग इन। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, इट्स एन अमेजिंग टूल, बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब ये टूल हमारा मास्टर बन जाता है। सो डोंट ट्राई चेंजिंग द होल लाइफ टुमारो, स्टार्ट विद अ स्मॉल, एक छोटी सी प्रॉमिस करें, आप भी कीजिए और मैं भी करती हूँ। कोई फोन नहीं ड्यूरिंग मील्स, मे बी द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप या लास्ट 30 मिनट्स सोने से पहले। जी हाँ, उस समय हाथ मत लगाइए। टेक अ वॉक विदाउट योर फोन, हैव वन कॉन्वर्सेशन एवरी डे वेयर योर स्क्रीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जो जिंदगी है ना, इट्स नॉट हैपनिंग इनसाइड योर फोन, इट्स हैपनिंग अराउंड यू व्हाइल यू आर लुकिंग डाउन। एंड फिर एक दिन क्या होगा ना, ये जो मेमोरीज है ना जो आप ट्रेजर करेंगे, वोंट बी द पोस्ट जो आपने लाइक करे थे, दे विल बी द मोमेंट्स यू एक्चुअली लिव्ड। बट मे बी इट्स टाइम ये सब छोड़ के ना जरा ऊपर देखो, आसपास देखो और अपने दिल को धड़कने दो, धड़कने दो। हमारे साथ वॉक पे जाओ, सिर्फ हमारी बातें सुनो, लेकिन देखो आसपास, फोन की तरफ मत देखो, धड़कने दो। एंड यू विल रियलाइज हर मोमेंट आप कितने मजे से उसके साथ एक मेमोरी बनाते हुए जी रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, कभी कभी एक छोटा सा प्रॉमिस अपने आप को, इट रियली गिव्स अस सो मच प्लेजर। स्टे ट्यून्ड, रेडियो मस्ती 24/7, डियर मस्ती दिल से। नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू, आप भी मुझे जज मत करो।

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
5: और आज की शाम फिर एक बार हमें ये एहसास करा गई कि लाइफ में सबसे मुश्किल चीज प्रॉब्लम्स नहीं होती, कभी कभी सवाल होते हैं.
6: Dear Musti, दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है.
5: और वो अनजाना इंसान आपको वाकई बता रहा है कि हमारे जो सवाल होते हैं ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मुझे और रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए. और शायद इसीलिए जिंदगी इतनी खूबसूरत भी है, बिकॉज एवरी स्टेज brings a new question and every experience brings a new answer. आज हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, लेकिन हर कहानी ने एक बात जरूर सिखाई. लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग, मेकिंग मिस्टेक्स, सेइंग सॉरी, ट्राइंग अगेन एंड बिकमिंग अ स्लाइटली बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स एवरी सिंगल डे. उसी के साथ मैं तो यही कहूंगी कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर हार्ट्स. हर लेटर जो आता है हमारे पास वो सिर्फ एक ईमेल नहीं होता, वो किसी की हिम्मत होती है. और जब आप अपनी कहानी लिखते हो ना, शायद किसी और को अपनी कहानी जीने की हिम्मत मिल जाती है. तो लिखते रहिए, क्वेश्चंस भेजते रहिए, कभी आंसर्स के लिए, कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि दिल हल्का हो जाता है. मैं रेणुका और ये डियर मस्ती दिल से. याद रखिए, जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, उसी समय नहीं मिलता, लेकिन हर सवाल हमें अपने बारे में कुछ नया जरूर सिखा देता है. अपना ख्याल रखिए, दिल का भी ख्याल रखिए और उन लोगों का भी जो आपके दिल में रहते हैं. हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द इवनिंग एंड हम आपको मिलेंगे, जी हाँ, इसी शो पर अगले हफ्ते ट्यूसडे 5 से 8, और अगर आप ऑन कोर्स सुन रहे हैं तो थर्सडे शाम. चलते हैं, तब तक चलते हैं साथ साथ इस हसीन दुनिया को जीते हुए. दिस इज रेणुका साइनिंग ऑफ.
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: छम छम छम छम करती आ गई।
1: हाँ तो क्या करेगी?
0: अरे गाएगी, नाचेगी, झूमेगी और सबका दिल बहलाएगी।
1: हाँ तो भाई जान मेहरबान कदरदान कुछ कदर कीजिए, यानी सिर्फ 1 रुपया दीजिए मेरे भैया, 1 रुपया।

मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया न तो

0: डन इट।
1: तुम सुन नहीं रहे हो यार।
2: ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा मिल तो दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा मिल तो दे जाना।
1: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

0: थैंक यू सिमरन, तू आ गई, मैंने तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चक दे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।
2: समुंद शाह सुल्तान गिरह से तुलना मिस्र

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: अरे फ्राइडे की बात, जी हाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन। कहाँ पर हैं हम? रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी जी
1: जी जी।
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हां, थ्रू रेनुका एंड येट अनदर एडिशन ऑफ दिस अमेजिंग शो जिसको हम कहते हैं नो फिल्टर मस्ती मैडनेस। और अंतरा देख रही है कि मैं उसको कब बारी दूंगी बोलने की।
1: मैं तो अपनी लाइन तैयार करके एकदम बैठी हुई थी, रेडी के रेडी, कि रेणुका बहुत देर से दबा रहे थे लेकिन वो चल नहीं रहा था। पता नहीं क्या कर रही थी रेणुका। बहुत यूजुअली जब रेणुका दबाते हैं तो चल पड़ती है चीज़ें।
0: अच्छा, अब यही तो बात है कि जिंदगी में धीरे धीरे हमारा जो इम्पैक्ट है ना वो कम होता चला जा रहा होता है। oh, और इसीलिए no. दबाने से भी बहुत कुछ नहीं दबता। डार्लिंग, आ जाओ, शुरू करें मस्ती मैडनेस यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट वन गाना आफ्टर द अदर, टोटली अमेजिंग सॉन्ग्स लाइंड अप अपार्ट फ्रॉम द खबरें, ठीक है ना? क्योंकि जल्दी से इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आकर अंतरा मैं बताऊंगी कि लहसुन मतलब कि गार्लिक से शादी का डेकोर कैसे हो सकता है। वाह वाह, लेट्स गो ग्रीन। यस, गुड मॉर्निंग।
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Yo, boys, I am singing song. Soup song. Flop song.

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई दो दो डार्लिंग्स यहाँ पर आ चुकी है आपके फ्राइडे को और भी ज्यादा मजेदार मसालेदार बनाने के लिए. यस गुड मॉर्निंग, ये है मस्ती मैडनेस. मैं हूँ अंतरा, साथ में रेनुका.
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है
3: गैस्ट्रोनॉमिक. जी हाँ बिल्कुल, न्यूज के लिए आप पहुंच चुके हैं सही जगह. दिस इज मस्ती मैडनेस. और मस्ती मैडनेस में इस टाइम पर मुझे लगता है कि गैस तो एक तरफ है पर स्मेल दूसरी तरफ है. मतलब आप सोचिए, चाइनीज सुपर मॉडल की शादी हो रही है, ठीक है अंतरा, और साथ ही में इट्स अ फ्रेंच शटो एंड वहां पर इंटरनेट इज बजिंग कि भाई डिटेल्स देखिए शादी की. मतलब किस तरह से बल्ब्स ऑफ गार्लिक एंड गार्लिक ग्रीन्स लैविश फ्लोरल्स के साथ में रखे गए हैं इसको. मतलब ये जो पूरा सेरेमनी थी, इट वाज हेल्ड एट द मोस्ट सेम मुखा, मतलब बोलना भी नहीं आता मुझे बेसिकली. वहाँ पे थे
4: इतनी देर में इतनी सारी फ्रेंच बोल दी, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा.
3: कोशिश कर रही थी पर गलत ही बोली होगी. पिंक ट्यूलिप्स, पियोनीज साथ, मतलब आप अगर उसका डेकोर देखें तो आपको लगेगा वाह. लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सिंबोलिज्म था वहां पर, जहां पर ऐसे अलग अलग तरह के फूल जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हैं वो वाले लगे हुए थे. वहीं बीच में गार्लिक्स, गार्लिक का जो वो बल्ब्स होते हैं ना, बेसिकली लहसुन के जो पूरे के पूरे गुच्छे होते हैं, वो फूलों के बीच में ही सजाए हुए थे. तो आप सोच सकते हो कि हाँ, तो हमें लगा पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन सुना है कि चाइनीज कल्चर में अनपील्ड बल्ब्स ऑफ गार्लिक दे टॉक अबाउट हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड अ लॉट मोर. और हमारे घरों में अगर लहसुन से सजा दी शादियाँ तो आई एम नॉट टू श्योर हाउ पीपल विल रिएक्ट. व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट?
4: एक तो माई नोज डजंट काइंड ऑफ अग्री टू वट एवर दे हैव डन. मतलब प्लीज डू नॉट मिक्स दीज टू. ओके, तुम्हें अगर पूरा कल्चर करना था तो तुम इसको कुछ और भी कर ही सकते थे, बट देन ओके वट एवर यू हैव डन डन. अनदर थिंग मी लॉर्ड, मतलब कुछ भी लगा के उसको मीनिंग देने का ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि ये लगा दिया, अब हमने इसको सिंबॉलिक भी कर दिया, इसीलिए किया जाता है. इट्स द सेम थिंग, कोई मेरे टैटू के बारे में पूछता है, मैं हर किसी को अलग बताता हूं.
3: एग्जैक्टली माय पॉइंट. जी बिल्कुल. तो अब ऐसा है कि आपने गलती तो कर दी, अब उसको कवर अप कैसे करना है. तो चलो ठीक है, बट इट्स एक्चुअली ब्लेंडिंग वेरी वेल. मैं ये भी देख के हैरान हो रही हूँ. आप भी सर्च करो गार्लिक वेडिंग और ऑफकोर्स ही
4: स्मेल. सोच रहे हो पियोनीज के बीच में गार्लिक की स्मेल, वो एकदम लसन वाली स्मेल आ रही है. मतलब कैन यू, आई कैन नॉट, डू नॉट वॉन्ट टू इमेजिन.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, एक ही बात चल रही है और उस बात का नाम है मस्ती मैडनेस. आप हैं कि नहीं है यहाँ पर?
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: भाई मेरी ये पुकार एंड गुहार ऑफ टू ऑल दोस पीपल हु आर यू नो हु हैज देयर दिस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है उनकी, ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं. वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बट डोंट ट्राई एंड इम्पोज दैट ऑन अदर्स कि यही तुम्हारी जिंदगी का एक ही सत्य होना चाहिए कि तुम अब ऐसा हो जाओ जैसा मैं हूँ. डू नॉट डू दैट, इट्स सो इरिटेटिंग.
2: भाई बहुत बहुत गहरी बात बोल गई है अंतरा. मैं समझना चाहती हूँ कि ये गहराई कहाँ से आ रही है, बताइए पूरी खबर, बताइए खुल के बताइए. जी
4: हाँ जी, गहराई इसलिए आ रही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक दे फोर्स यू टू डू सो. ठीक है, मेरे को भी पता है कि क्या चीज करना है नहीं करना है. हर कोई अपने अपने पेज पे कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको मतलब गर्दन पकड़ के ये मत बताओ. बट वेब ब्रायन जॉनसन का नाम हम सभी ने सुना हुआ है, सुना है राइट?
2: जी.
4: उनके ये वो बिलियनियर है जिन्होंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है, अपने बेटे का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट किया हुआ है क्योंकि इनको फॉरएवर यंग जो है इतना है. एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग पीपल आल्सो कि भाई दिस इज द वे ऑफ लाइफ, तुम लोग नहीं जियोगे, मैं तो ऐसे जीता रहूंगा, हमेशा जवान दिखूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स. डू यू नो व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन हिम? ही हैज गॉट दिस ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, जो कि इतना एवरी डे ही इज गेटिंग हेल्थ चेकअप, उसमें पकड़ा नहीं गया, वेयर हिज स्टमक इज ईटिंग इटसेल्फ एंड इट्स इनक्योरेबल. इसका कोई क्योर नहीं है. स्टमक की लाइनिंग को अटैक करता है ये ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, इट्स अ कंडीशन. एंड या एआई कोशिश कर रहा है इसका कुछ सोल्यूशन निकालने का, लेकिन अभी कुछ इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. सो क्या हो गया इतना सब कुछ करके भी?
2: कुछ नहीं, जिंदगी में क्या लिखा है वो तो बस लिखा ही है ना, आप कुछ भी कर लोगे. इतना संजीदा सवाल उठाया तुमने, मतलब
4: मेरा सवाल इसलिए था कि ज्ञान देना बंद करो
2: इसीलिए मैं चुप ही रही. मैंने कहा कुछ भी बोलूंगी तो यही मुझे घूर के देख के बोलेगी ये भी शुरू हो गई

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: जिंदगी में एक सवाल आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है या फिर हर जगह पूछा जा रहा है, वो ये है कि क्या औरतें इतनी सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट हो गई हैं दैट नाउ थिंग्स आर गेटिंग मोर चैलेंजिंग इन लाइफ बिकॉज ऑफ दैट रीजन.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस.
1: क्यों अंतरा,
3: सोचो फिर कितनी ऐश की जिंदगी जी होगी तुमने अब तक, जो तुम्हें अब लग रहा है कि हमारी जिंदगी में चैलेंज वापस आ गया है.
1: रेडियो मस्ती 24/7 पर. वेल, ऑल आई कैन से इज दैट एक मैच मेकर का कैंडिड अकाउंट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद अ सक्सेसफुल इंडियन वुमन लिविंग इन सिंगापुर, जी हाँ, काफी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर. और उसकी वजह से डेटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं और मैरिज एक्सपेक्टेशंस जो हैं और चैलेंजेस जो हैं विच आर फेस्ड बाय हाई अचीविंग प्रोफेशनल्स, ये सब पहुंच चुका है एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन. तो अब हुआ कुछ ऐसा कि एक इंडियन लड़की जो कि सिंगापुर में लीगल काउंसिल है, वो 2 करोड़ रुपए एनुअली कमाती है. ठीक है, लॉयर है सिंगापुर में. ये सैलरीज फॉर लॉयर्स आर नॉट अनहर्ड ऑफ. नाउ द थिंग इज दैट शी इज 39 एंड शी इज ओपन माइंडेड इन हर सर्च फॉर अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि 12 साल से उसके माँ बाप उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं और वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं. अब उसने रिलीज करी एक स्टेटमेंट, एक पोस्ट जिसमें कि उसने कहा कि भाई जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो एक तो 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आई एम 39, ही कैनॉट बी मोर देन 42. सेकेंडली, ही मस्ट अर्न एज मच एज आई एम. ठीक है, देन ही शुड नॉट बी मैरिड, नॉर्थ इंडियन होना चाहिए और सिंगापुर में होना चाहिए. मेरे को तो इसी बात पे इतनी जोर से हंसी आई. मतलब मैडम 42 ईयर ओल्ड, नॉर्थ इंडियन, सिंगापुर में, जो कमा रहा है 2 करोड़ से ज्यादा, तो तुझे लगता है बहन कि वो तेरे लिए बैठा हुआ है अब तक.
4: हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई येलो.
3: क्या ही बोलूं, मतलब दो जब तक आपने ये बात के वाले लास्ट 2 पॉइंट्स बोले नहीं थे ना, तब तक मैं इस बंदी के साथ थी कि भाई ठीक है, कमा रही है, बोली सकती है, ये सारी चीजें
1: जी.
3: बट लास्ट 2 पॉइंट्स आते हुए कहा दीदी, दीदी कम ऑन, दीदी कम बैक टू रियलिटी, दीदी
1: आप बैठो, अभी 12 ही साल हुए मम्मी डैडी को, कोई नहीं 12 साल आप भी लगा लो आएगा.

0: They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.

0: हाई हायरार्की माँ नाम की जो है एक चीज होती है, फॉलो करनी चाहिए उसको, फॉलो.
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है. जी बिल्कुल, हायरार्की को फॉलो करती हुई यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन साउंड करती हुई ऑन अ फ्राइडे. इसको पता है ना, फ्राइडे को थोड़ी देर डिसिप्लिन साउंड कर लो, उसके बाद तो घर ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐश और दो दिन गायब. रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा मुस्कुरा रही है मंद मंद.
0: खुशी तो देखो, मतलब फ्राइडे के मतलब जो स्माइल आई है बोलने के बाद रेणुका के खुद पर्सनली एकदम अंदर से ग्लो जो आ रहा है. बस वेल भाई, हायरार्की की बात इसलिए हो रही है कि क्या होता है कि जब आप बॉस बनते हो फिर आपको लगता है कि ये काम इसको दे दो, फिर वो अपना खुद बॉस बन रहा होता है, फिर उसको लगता है कि मैं किसी और को काम दे दूं. तो कुछ ऐसा हो गया, हमारे एक बिजनेसमैन साहब, उन्होंने हायर किया एक हिटमैन टू किल दिस मैन हु वाज ट्राइंग टू सू हिम.
1: ओके,
0: ठीक है. नाउ दिस हिटमैन जिसको हायर किया था उसने डेलीगेट कर दिया कि आई विल हायर अ चीपर वन.
1: ओके,
0: और उस बंदे ने भी कर लिया एक और हायर जो चीपर वन. तो ये प्रोसेस चार बार चला, चीपर. तो जो जॉब $282,000 में शुरू हुआ था वो $4,000 के में आके बाय द टाइम इट केम टू द फिफ्थ हिटमैन चीपर चीपर चीपर करते हुए ये तो हुआ, फिफ्थ हिटमैन तक आया. बट अल्टीमेटली नन ऑफ देम डिड द जॉब. फिफ्थ हिटमैन के पास जाकर भी उसने कहा कि बहुत कम पैसे, इतने में तो मैं करूंगा ही नहीं.
1: सो बेसिकली काम नहीं हुआ ये आउटसोर्सिंग की वजह से.
0: आउटसोर्सिंग की वजह से काम हुआ नहीं.
1: मैं कहती हूँ ये आउटसोर्सिंग ने इतना टंटा लगाया है कि एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, सब कॉन्ट्रैक्टर आता है, सब कॉन्ट्रैक्टर
0: और हाँ, फिर क्योंकि सबको चाहिए कि कम पैसे में हो जाए, ज्यादा पैसे हमारे पास रुक जाए.
1: घर बैठे बैठे हमें भी तो यही चाहिए. रेडियो मस्ती 24/7 पर फ्री का सुन रहे हो आप, वैसे देख रहे हो ना, फ्री का सुन रहे हो.

0: हुआ ये, हम 8 बजने के उस पार आपको एक इंटरव्यू में लेकर चलते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर। तैयार है आप टाइम से पहुंच जाना?
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: सूटेड बूटेड इंटरव्यू के लिए जी बिल्कुल तैयार है हम। बताए मस्ती मैडनेस पे कौन सा इंटरव्यू, किधर देना है, किधर देना है?
0: तो भाई ऐसा है कि बेंगलुरु चलेंगे हम, ठीक है, और एक बढ़िया सा इंटरव्यू देंगे वहां पर, एक जॉब इंटरव्यू जिसको हमेशा याद किया जाता है कि भाई इसमें ऐसे सवाल पूछे गए थे या ऐसा रोल था या फिर मतलब पैसे इतने मिल रहे हैं उससे, राइट? सो एक बेंगलुरु का एंटरप्रेन्योर शिखर सक्सेना, वेल एक इंटरव्यू दैट ही ऑलवेज विल रिमेंबर एंड रिमेंबर्ड इज फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन। जो फाउंडर था उस कंपनी का, वो 40 मिनट लेट आया फॉर द स्केड्यूल्ड मीटिंग एंड कभी उसने आके एक बार मुंह से सॉरी भी नहीं बोला कि भाई सॉरी टू कीप यू वेटिंग, 40 मिनट इज नॉट अ छोटा टाइम, राइट? सो उसने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई अपोलॉजी नहीं, सिंगल इंटरेक्शन ऐसा हुआ एंड दैट वॉज गुड इनफ फॉर दिस गाय टू नो कि भैया यहाँ काम नहीं करना है। अब उसके बाद ऑफ कोर्स ऑनलाइन जब ऐसी चीज डाल दो तुम तो बड़े सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, लेकिन ये भी पता लगा बाद में कि भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और जो लीडर की वैल्यू है वो पता लगता है बाय द टाइम। ठीक है तुम लेट हो सकते हो बट व्हेन यू अराइव देन यू डोंट इवन अपोलोजाइज स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर एटीट्यूड।
2: बाप रे बाप, ये तो बड़ी सिंसियर बात हो गई, बट बात तो सही है, बनता तो है एकदम। आई एम विद हिम ऑल दैट। जितना हक आई थिंक एम्प्लॉयर को बनता है, ये बेसिक हक तो एम्प्लॉय जो भी लाइक पोटेंशियल एम्प्लॉय को भी मिलना चाहिए कि भाई मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, है तो है।
0: Absolutely. And I think workplace का जो culture है, जो ethics है, वो यही चीजों से decide होता है। After all, you have to lead by example. Oof, not apologizing is a huge red flag. Sorry नहीं बोले ना कोई भी अंतरा, कभी भी।
2: जी,
0: चलो जाना, बोल ठीक है, बाहर में जाओ।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.